91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया, बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: पता नहीं, उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: क्या है?
1: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टिव, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं, लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, और जीनियस।
1: यूर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
5: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
6: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की, तो होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं, अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली दे के बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
7: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
6: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
8: दिला तो दूंगा, पर मेरे एक काम करना पड़ेगा।
6: हाँ बोलो।
8: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे हुए।
6: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
8: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
1: गजब बेइज्जती है।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

जाके। दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों
4: बैठा है? पता नहीं तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले।
6: पता है ना मुझे टीबी है।
5: चल तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी,
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू, पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टिव, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं, लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। नाउ से यू आर अ जीनियस।
5: यू आर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है? अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। ये होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्रीराम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं, अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
7: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
9: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
7: हाँ बोलो।
9: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
7: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
9: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
5: गजब बेइज्जती है।

दोस्तों कहते हैं जीवन में सही रास्ता वही है जो आपको शांति दे, भले ही वो रास्ता भीड़ से अलग क्यों ना हो। दूसरों से बेहतर बनना जरूरी नहीं, कल के अपने आप से बेहतर बनना ही सच्ची प्रगति है। ईश्वर उन्हीं के साथ है जो मेहनत में विश्वास और परिणाम में धैर्य रखते हैं। कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए, और इसी कर्म के साथ जिंदगी में आगे की ओर बढ़ते जाइए। नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मनोरंजन के साथ। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं, और हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। तो स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से कार्यक्रम में खूबसूरत से सुबह के साथ। जी दोस्तों, सुबह की शुरुआत तो आप सभी की बहुत ही प्यारी रही ही होगी ये उम्मीद करते हैं, लेकिन उसे और ज़्यादा प्यारा बनाते हैं प्यारी प्यारी सी कुछ खास बातों और मनोरंजन के साथ। तो दोस्तों, आज 27 सितंबर 2026 का दिन, बहुत प्यारा सा दिन, संडे का दिन। संडे का नाम जब भी आता है तो चेहरे पे मुस्कान पहले ही आ जाती है, क्योंकि छुट्टी वाला दिन होता है, सभी की रूटीन बिगड़ने का दिन होता है, आराम वाला दिन होता है। बिल्कुल, तो आज आपकी सुबह की शुरुआत किस तरह से हुई, चाय के कप के साथ हुई या फिर कॉफ़ी के साथ हुई या फिर ग्रीन टी के साथ हुई, सभी की अपने अपने अंदाज में हो चुकी है जी दोस्तों। लेकिन हाँ, थोड़ा सा रूटीन से देरी से जरूर हुई होगी, क्योंकि आज के दिन थोड़ा आलस जो है हमें छोड़ता नहीं है, मन करता है थोड़ा और सो लिया जाए। लेकिन धर्मशाला की बात करें तो यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो किसान हैं, खेतीबाड़ी वाले लोग हैं, तो उनके लिए तो बस छुट्टी का दिन है, तो सुबह सुबह बहुत सारे काम जो है वो गिन कर रखे होते हैं, तो उन्हीं की शुरुआत हो चुकी होगी। तो आइए दोस्तों, हम भी अपने कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं मनोरंजन की, क्योंकि बातचीत की तो हो ही चुकी लेकिन साथ ही मनोरंजन की भी करते हैं। तो आइए आप सभी तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, इंजॉय कीजिए अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

दोस्तों मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों के साथ आप सभी एंजॉय कर रहे थे कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत, जिसके साथ कार्यक्रम में मनोरंजन की शुरुआत हो चुकी है। और उम्मीद है दोस्तों कि आपका मूड भी बिल्कुल एकदम से फ्रेश, वैसे तो सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश

कुछ होता ही है, एक एनर्जेटिक सी सुबह रहती है, लेकिन हाँ छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा आलस जो है वो ज़रूर रहता है। लेकिन जब हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होता है, हमें काम का पता होता है कि नहीं ये सारे काम हमें करने हैं, तो फिर वो आलस अपने आप दूर भाग जाता है। इसी के साथ लेकर चलते हैं दोस्तों आप सभी को मौसम की ओर। तो इस समय धर्मशाला के तापमान की तरफ अगर हम रुख करें तो दोस्तों 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस समय आप सभी महसूस कर सकते हैं। और मौसम विभाग के अनुसार अगर हम देखें तो दोस्तों किन्नौर में सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है जी दोस्तों। मौसम विभाग विज्ञान विभाग ने 27 सितंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में यानी कि आज के दिन भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 8 जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और दोस्तों आप देखें तो गरम चमक के साथ जो है वो भारी बारिश की संभावना तो है ही। और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट इसी के चलते जारी किया गया है। बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर में येलो अलर्ट रहेगा। 28 सितंबर को शिमला, सोलन और सिरमौर में येलो अलर्ट रहेगा। 29 सितंबर के बाद मौसम को लेकर कोई चेतावनी अभी फिलहाल के लिए जारी नहीं की गई है। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है जी दोस्तों। तो ये तो मौसम है, और मौसम कब किस तरह से करवट बदले ये कोई नहीं जानता, हम सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मौसम विभाग हमें समय समय के साथ जो है वो अपडेट अपने अकॉर्डिंग करते रहते हैं, तो हमें भी पूरी सतर्कता के साथ सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो फिलहाल कार्यक्रम में भी थोड़ी सी सावधानी यानी कि बातों से हटकर मनोरंजन की ओर चलना चाहिए। तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, और आज के दिन को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनों के प्यार के साथ, अपनों के साथ। बिल्कुल दोस्तों, बहुत खास दिन होता है जब भी छुट्टी का दिन आता है ना, तो एक उम्मीद जो घर पे रहते हैं ना, उनके चेहरों पे मुस्कान देखने की एक अलग ही झलक सी मतलब दिखाई देती है कि वाकई में आज पूरा परिवार एक साथ जो है पूरा दिन पल जो है वो खूबसूरती के साथ बिताएंगे, कुछ यादगार पल, चाहे वो फिर घूमने जाना हो, चाहे किसी रिश्तेदारों के घर जाना हो, चाहे कहीं भी किसी भी तरह से। हर किसी का अपना अपना अंदाज है, कुछ खेतों में बिताएंगे आज का दिन। तो दोस्तों बिल्कुल, ये रूटीन आपकी प्यारी रहे, मनोरंजन से भरी रहे और बातों से भी थोड़ा प्यार जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप सभी का साथ आप सभी के अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ इतना ज़्यादा है ना कि ढेर सारी बातें करने का मन करता है। और वाकई में रुचिका तो बहुत ही सारी बातें करती है, लेकिन बातों से हटकर थोड़ा सा लेकर चलते हैं जानकारियों की ओर, जहां हम हिमाचल की बात करते हैं दोस्तों। और फिर बात आ जाए हिमाचल पे गर्व महसूस करने की, तो ऐसी जानकारियां कैसे पीछे रह सकती हैं, और खास करके बेटियों का दबदबा। बिल्कुल दोस्तों, तो ये बातें कैसे छुपी रह सकती हैं, और इन बातों पे अगर हम बात ना करें तो शायद ये गलत बात हो जाएगी, और गलत हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आइए लेकर चलते हैं आप सभी को इस खूबसूरत सी बहुत ही खास जानकारी की ओर। दोस्तों, उप मुख्य सचेतक एवं शाहपुर विधायक केवल सिंह पठानिया ने शनिवार सुबह चंबी मैदान पहुंचकर यूथ स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों से मुलाकात की और निर्माणाधीन स्टेडियम के कार्य का जायजा लिया। स्टेडियम की रिटेनिंग वॉल पर करीब 20 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पवेलियन ब्लॉक, खिलाड़ियों के रेस्ट रूम, बाथरूम और चेंजिंग रूम सहित अन्य सुविधाओं का निर्माण कार्य जारी है, जिन्हें करीब 2 से 2.5 माह में खिलाड़ियों को समर्पित करने का लक्ष्य है। चंबी स्टेडियम शाहपुर की खेल प्रतिभाओं के लिए बेहतर मंच बनेगा और युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, ये पठानिया जी का कहना है। और दोस्तों, बेटियों की बात हो रही थी ना, तो आइए आते हैं अब उस खास बात पे। एशियन गेम्स में हिमाचल की बेटियों ने बढ़ाया मान, श्री पठानिया जी ने एशियन गेम्स में हिमाचल की बेटियों के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई है। उन्होंने भारतीय महिला कबड्डी टीम की पुष्पा राणा, ऋतु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को शुभकामनाएं दी। जी दोस्तों, चंबा के चुराह क्षेत्र की धाविका सीमा कुमारी को महिलाओं के 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल की बेटियों की उपलब्धियां प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। जी दोस्तों, तो बेटियों की बात करें तो जहां आज भी कहीं बेटियों को दहेज के लिए जो है वो उत्पीड़ित किया जाता है, कहीं जला दिया जा रहा है, तो कहीं हम देखें तो एक ही साथ जो है वो बेटियों के साथ जो 3-3 गैंग रेप की बातें जो हैं वो सामने आती हैं, तो यहाँ सुरक्षा की बात भी सामने आती है। लेकिन वहीं हम ये बात करें गर्वान्वित होने की, तो देखिए दोस्तों, हिमाचल की बात है और हिमाचल की बेटियाँ जो हैं वो हिमाचल का नाम जो है वो ऊंचाई तक लेकर जाने की कोशिश में पूरी जी जान से मेहनत कर रही हैं, तो उन्हें ज़रूरत है सपोर्ट की, उन्हें ज़रूरत है सुरक्षा की, एक सुरक्षित माहौल की। तो बेटियों को अगर आज सुरक्षित माहौल घर पर ही नहीं मिल सका तो बाहर बहुत मुश्किल है, तो उन्हें कोशिश कीजिए कि एक अच्छी परवरिश के साथ, संस्कारों के साथ उन्हें आगे बढ़ाएं। खैर, वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जाने अनजाने में गलत सामने आता रहता है, और ऐसी घटनाएं और इन घटनाओं का शिकार बेटियां न जाने क्यों बन जाती हैं, क्यों हम इतने इन बातों पे लापरवाह हो जाते हैं या नज़रअंदाज करते हैं। खैर, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे, और इस पे हम थोड़ी सी और नज़र दौड़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेकर चलते हैं फिर से आप सभी को मनोरंजन की ओर।

बिल्कुल दोस्तों, जहाँ झूठ हमारी जिंदगी में एंटर हो जाता है तो सच हमेशा दबा दिया जाता है, और झूठ के सहारे बहुत सारे लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और इसी झूठ के चलते जो है कुछ भोले भाले से ईमानदार से लोगों के साथ अन्याय हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि हर किसी का एक तरह से बिहेवियर एक जैसा तो होता नहीं है, हर किसी का तरीका, हर किसी का अंदाज अलग अलग होता है, तो उसी के चलते कुछ लोग बहुत

करना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों हम बात कर रहे थे ना कि बेटियों का दबदबा, तो आज कहने को तो हम कह देते हैं कि समाज बदल गया है, सोच बदल गई है, लोग बदल रहे हैं धीरे धीरे। यदि अगर हम बदल रहे हैं, अपनी सोच को बदल रहे हैं, तो फिर क्यों ये बातें आज भी सामने आती हैं कि बेटियों के साथ जो है वो एक दहेज के लिए जो है उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यदि हमने सोच बदल ली है तो ये बातें सामने नहीं आनी चाहिए, लेकिन आज भी हमें ये देखने को मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि हम कहते कुछ और हैं लेकिन अंदर की बातें कुछ और होती हैं। दिखाने के लिए दिखावा जो हम करते हैं वो बहुत बड़ा बड़ा कर देते हैं, लेकिन असलियत अक्सर घर के लोग ही जानते हैं। घर घर की कहानी वहीं आकर रुक जाती है दोस्तों। चाहे हम कितना भी खुद को मॉडर्न ज़माने की ओर लेकर चले जाएं, कितना भी अपने आप को अपडेट कर लें, लेकिन जब बात अपने घर की आती है, खुद की आती है, तो वो बातें हमें फिर से परेशान करती हैं कि आखिर हमने, क्योंकि दूसरों को एडवाइस हम कर देते हैं लेकिन जब खुद पे सोचने की बात आती तो हम यही सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। सभी तो लेते हैं, हम भी ले लेते हैं, ये होता है वो होता है, इसी बात की बात नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं। हम आज ये कहते हैं बेटी बोझ नहीं है, बेटी को बहुत प्यार से, बहुत सारे घरों में प्यार से बेटियों के जन्म पे उनका वेलकम किया जाता है, लेकिन बहुत सारे घरों में आज भी बेटियों को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, उन्हें एक अलग ही जीवन जो है वो जीना मजबूरी में पड़ता है, उन्हें अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे देखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आज भी हैं जो हमारे सामने नहीं हैं लेकिन हर घर की कहानी में ज़रूर छिपी हैं। तो इन बातों पर गौर करना, इन बातों को गहराई से समझना हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना हम दिखावे के लिए करते हैं उतना हम असलियत में करें तो शायद दुनिया बदल जाए, हम सभी की ज़िंदगी बदल जाए।

91.2 ओमेगा हर्ट्ज़ पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम। इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों, बेटियों की हम बात कर रहे थे तो आज के दिन यानी कि 27 सितंबर को बहुत खास दिन बेटियों के लिए समर्पित। जी दोस्तों, भारत में हर साल सितंबर के चौथे रविवार को डॉटर्स डे मनाया जाता है। 2026 यानी कि इस साल 27 सितंबर रविवार को आज ये खास दिन मनाया जा रहा है। इस दिन माता पिता अपनी बेटियों के प्रति प्यार और

और गर्व जाहिर करते हैं और उनके सपनों, उपलब्धियों और व्यक्तित्व को सम्मान देते हैं। तो दोस्तों, इतनी खास और खूबसूरत सी जानकारी भी आप सभी तक पहुंचाई जो कि बेटियां हिमाचल का नाम गर्वान्वित कर रही हैं। तो ऐसे में देखिए, बेटी के लिए प्यार सम्मान परिवार की तरफ से कितना ज़रूरी है, क्योंकि देश की तरफ से, प्रदेश की तरफ से तो उन्हें मिलेगा ही, लेकिन जो सम्मान परिवार में उन्हें मिलना चाहिए, जो रिस्पेक्ट उन्हें अपनों से मिलनी चाहिए, वो अगर ना मिले तो शायद सब कुछ अधूरा सा रह जाता है, सब कुछ होकर भी नहीं होता। तो आइए इन्हीं बातों के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

0: बेटियाँ इसी तरह से प्यार लाड़ प्यार जो है वो डिजर्व करती हैं वाकई में। अगर उनकी ये खिलखिलाती सी हंसी अगर घरों में ना हो तो कहीं ना कहीं बोरिंग सा महसूस होता है। और आज का दिन खास है और छुट्टी वाला दिन भी है, तो ज़रूर उनके लिए और ज़्यादा खास बनाए ताकि आपको आने वाले समय में और ज़्यादा उनके लिए उन पर गर्व महसूस हो। जिस तरह से आज हिमाचल का नाम जो है चार बेटियों ने एक तरह से उनके जिम्मे जो है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। तो उनकी मेहनत और लगन आज यहाँ तक लेकर आ पहुँची है, तो उसी तरह से हर बेटी डिज़र्व करती है मेहनत और लगन। लेकिन उसके लिए दोस्तों सपोर्ट और साथ की ज़रूरत रहती है, तो ज़रूर आप बेटियों को हिम्मत दें, ताकत दें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। फिलहाल समय हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का, तो आइए लेकर चलते हैं आप सभी को समाचारों की और उसके बाद फिर से वापस आते हैं अपनी इस बहुत ही खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में।
1: 11 बजे आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होगा। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है।

0: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की जीडीपी में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ 50 लाख से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है।
1: इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में बिरला ने कहा कि पर्यटन केवल यात्रा और दर्शनीय स्थलों को देखने से कहीं अधिक है और ये देश की विरासत, संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं के बारे में जानने और

विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि इस अवसर पर एयरपोर्ट पहुंचने वाले पर्यटकों का विशेष स्वागत किया जाएगा। विनय धीमान ने बताया कि इस

0: डे 27 सितंबर को मनाया जाएगा और हमेशा की तरह इस बार भी हम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कोलैबोरेशन से इस डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं। टूरिज्म डे पे जो जितने विदेशी पर्यटक इस एरिया में होते हैं वो जितने भी जहाँ भी स्टे उन्होंने किया होता है सभी जो यूनिट्स हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनका स्वागत जो है स्पेशली करें। और हमारा जो जैसे एयरपोर्ट पे स्वागत समारोह रहता है उसमें जितने भी पर्यटक आते हैं चाहे डोमेस्टिक हैं चाहे फॉरनर्स हैं उनको सभी को जो है वो हम उनका स्वागत करते हैं।
1: वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

0: लेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद।
1: में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
2: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
1: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
3: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में कल जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया।

0: से बेहतर बनाकर देश भर में बाजार उपलब्ध करवाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। स्थानीय उत्पादों की वैज्ञानिक तरीके से पैकेजिंग और ब्रांडिंग होने से इनकी मांग बढ़ सकती है। इससे युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलने के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है। किन्नौर के युवाओं को उद्यमिता और उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण देने तथा उन्हें स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया गया। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: हिमाचल प्रदेश के

0: खुशी की लहर है। एशियन गेम्स में मैराथन स्पर्धा में भारत को 44 साल बाद ये पदक हासिल हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सावन बरवाल की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण ने देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित किया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के जोगिंदरनगर के धावक सावन बरवाल ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को मैराथन में ऐतिहासिक रजत पदक दिलाया। 28 वर्षीय सेना के जवान ने 42.195 किलोमीटर की दौड़ 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड में पूरी की और इसके साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। सावन का ये रजत एशियन गेम्स की मैराथन में भारत का 1982 के बाद पहला पदक है। वह एशियन गेम्स में मैराथन पदक जीतने वाले भारत के चौथे धावक भी बने। जोगिंदरनगर के सावन ने 14 वर्ष की उम्र में संयोग से दौड़ना शुरू किया। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल

मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है, किन्नौर में बर्फबारी, आज भी बारिश का अलर्ट। हिमाचल दस्तक का कहना है, मौसम ने ली करवट, ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी, जबकि दैनिक भास्कर के शब्द हैं, किन्नौर में सीजन की पहली बर्फबारी, शिमला में बारिश से पारा 9 डिग्री तक गिरा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। विश्व पर्यटन दिवस आज, पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर। देश व प्रदेश में आज खुले रहेंगे सार्वजनिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। मंडी जिले के जोगिंदर नगर निवासी सावन बरवाल ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक किया हासिल। मुख्यमंत्री ने दी बधाई और ऊंची चोटियों पर बारिश व बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज। मौसम विभाग ने आज राज्य के 8 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट किया जारी। इसी के साथ

दोस्तों प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। ट्यून किया है इस समय आप सभी ने 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। दोस्तों आज की बात करें यानी कि 27 सितंबर 2026 के, तो एक तरफ हम जो है बेटी दिवस भी मना रहे हैं और दूसरी तरफ पर्यटन दिवस भी हम जो है वो टूरिज्म डे जो है वो मना रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों श्राद्ध भी चल रहे हैं, पितृपक्ष जो है पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता श्रद्धा और स्मरण का पावन अवसर। पितृपक्ष के इन पावन दिनों में अपने पितरों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करें, तर्पण श्राद्ध दीपदान एवं अन्नदान श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करें। पितरों का आशीर्वाद आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे। लेकिन दोस्तों यही हम बात करें जहां हम अपने पूर्वजों की बात कर रहे हैं, तो अभी श्राद्ध का समय चल रहा है तो बहुत सारे लोग जो है बहुत धूमधाम से श्राद्ध को सेलिब्रेट करते हैं। पितरों के लिए जो है वो खाना बनाते हैं, उनके लिए पूजा पाठ जो है वो सब करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई बार हम अपने घरों में जो इस दुनिया में हैं पूर्वज, जो बुजुर्ग हैं, उनकी हम केयर नहीं करते हैं, उनको दो वक्त की रोटी भी समय से नहीं नसीब होती है, उनकी केयर नहीं कर पाते, उनको बिल्कुल भी हम जो है ध्यान नहीं दे पाते। तो ये बस सारी बातें हमें देखनी चाहिए, सुननी चाहिए और इस पे सोच विचार जो है वो ज़रूर करना चाहिए कि चलो दुनिया से जाने के बाद तो उन्हें हम बहुत स्मरण करते हैं, बहुत याद करते हैं, लेकिन जब वो हमारे पास हैं, जब हम उनके साथ कुछ खूबसूरत से पल बिता सकते हैं तो उन पलों को भी खूबसूरत बनाया जाए, उनका जो है सम्मान किया जाए, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। तो आइए इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम में खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं और बहुत ही खास बातों के साथ, बहुत ही प्यारे प्यारे से गीत संगीत के साथ आप सभी आज के दिन को, आज के इस प्यारे से संडे को और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा प्यारा बना रहे हैं। और दोस्तों जैसे कि हर कार्यक्रम में कुछ खास रहता है और आज के दिन जो है वो आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व पर्यटन दिवस, माफ करना दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस, और साथ ही जो है बेटी डॉटर डे जो है वो भी आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे बेटियां मेहनत करती जाती हैं, लगन के साथ आगे बढ़ती जाती हैं, तो पेरेंट्स के साथ साथ पूरे समाज को भी गर्व होता है, पूरे देश को गर्व होता है, उनके शिक्षकों को गर्व होता है। कहते हैं ना दोस्तों कि कोई भी मंजिल जब बच्चा हासिल करता है तो सिर्फ उसके पीछे एक ही इंसान की खुशी नहीं छुपी होती, बहुत सारे लोग जो है अपनी ज़िंदगी की मेहनत, संघर्ष और सारी चीज़ें जो है ना वो सामने आ जाती हैं। और बहुत अच्छा लगता है उस समय जिन शिक्षकों ने उस बच्चे को पढ़ाया हो, माता पिता और बहुत सारे जो लोग जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया हो आगे बढ़ने के लिए, एक सही राह दिखाने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों कहते हैं ना कि सपने देखना और उन्हें अचीव करने के लिए कोई सही समय का हमें इंतज़ार नहीं करना होता है, यानी कि कोई उम्र या कोई ऐसा स्पेसिफिक समय नहीं होता है, वो जब मन किया, जब हमारे अंदर वो जुनून जाग उठा तो तभी बस उसके लिए लग जाइए हिम्मत और जुनून के साथ, तो वो ज़रूर सफलता की ओर जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो आपने सभी ने एक बहुत ही खास कार्यक्रम जो है वो सुना था कुछ समय पहले, पिछले कल भी सुना आप सभी ने, जिसमें कि निमृत शर्मा जो कि अभी 10th क्लास की छात्र है, तो उन्होंने इतनी कम उम्र में किताब लिखी है। और दोस्तों बहुत ये भी गर्व की बात है पेरेंट्स के लिए भी और पूरी फैमिली के लिए, उनके शिक्षकों के लिए, सबके लिए। तो बहुत बड़ी बात है कि 10th क्लास यानी कि 10वीं क्लास बोर्ड क्लास के साथ साथ किताब लिखना, और वो भी 3 एडिशन पे, यानी कि युवाओं पे, ये सबसे खास बात है। तो आज उनसे हम बात करेंगे, उनके विचार जो है वैसे तो आप सभी तक पहुंचाए हैं, लेकिन हाँ गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम के माध्यम से भी आप सभी तक पहुँचाने की ये छोटी सी कोशिश है कि कुछ शब्द जो है उनके आप सभी तक, उनके विचार जो है वो आप सभी तक पहुंचाए जाए। तो जरूर दोस्तों उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। फिलहाल आइए लेकर चलते हैं आप सभी को एक प्यारे से खूबसूरत से गीत की, और उसके बाद वापस आते हैं बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: सो 91.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं इस समय कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ इस बहुत ही प्यारे से सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं इस संडे को और ज्यादा प्यारा बनाने के लिए। तो दोस्तों, इस गीत से पहले मैंने बताया था कि निमृत शर्मा जी जो कि अभी 10th क्लास में पढ़ रही हैं, और बहुत गर्वान्वित वाली बात है कि उन्होंने युवाओं पे जो है एक किताब लिखी है टीन एडिशन पे, किस तरह से हमारे बिहेवियर्स में चेंजेस आते हैं, किस तरह से हमारे जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, किस तरह से हमें उन्हें फेस करना चाहिए, किस किस तरह से हमारी जिंदगी के जो है ये सफर रहता है, किस तरह से क्या क्या चीज़ें जो हैं हमारी सामने आती जाती हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस किस तरह से रहा और क्यों ये प्रेरणा उन्हें जागी किताब लिखने की इतनी कम उम्र में। दोस्तों, कहते हैं वैसे तो कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत और जुनून हर किसी में एक तरह सा भी नहीं होता। तो आइए कनेक्ट करते हैं उन्हें हमारी इस खास बातचीत में। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार निमृत शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में।
1: जी, धन्यवाद
0: जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत अच्छी जो है एक मोटिवेशनल सी स्टोरी और प्रोग्राम जो है आपका हमारे दोस्तों तक पहुंचा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, मुझे बहुत खुशी हुई है इस चीज के लिए। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं एक रेडियो स्टेशन से अपनी बुक को प्रेजेंट कर रही हूँ, वो भी सबसे पहली बुक, सबसे पहला कदम मेरी सक्सेस की ओर।
0: जी, तो सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ से हैं और कौन सी कक्षा में आप पढ़ रही हैं।
1: जी, मैं निमृत शर्मा, क्लास 10th APSC ओल्गेंड में पढ़ रही हूँ। मैं लोकल यहाँ नरवाना से हूँ।
0: जी बिल्कुल। तो निमृत जी, आपने जो ये युवाओं के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए किताब लिखी है, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि अपने आप को जानना हमें इतना ज़रूरी है? इसमें आपने ये जिक्र किया है, शुरुआत ही इससे की है कि सबसे पहले हमें खुद के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दोस्तों को बताइए।
1: जी हाँ, टीनेजर एक ऐसी एज है जहाँ पे हर कोई अपनी लाइफ में गुजरता है, और इस एज के दौरान हम पे बहुत चेंजेस आते हैं और हमारा दिमाग बहुत चलता है, बहुत अच्छा कुछ सोचता है, बहुत बुरा भी सोच लेता है कभी कभी में।
0: जी,
1: और टीनेज में खुद को जानना, खुद के इमोशंस को जानना, उन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है।
0: जी
1: जी हाँ।
0: तो निमृत जी, आपको मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ जो है इस सफर में मुश्किल आई या आसान रहा, एंजॉय किया आपने इस सफर को?
1: जी हाँ, कभी लगता था कि नहीं होगा, पर कभी लगता था कि आज ही कर लूंगी।
0: जी,
1: तो धीरे धीरे करते करते बहुत अच्छा रहा मेरा सफर।
0: जी, तो आप जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो अभी इस सफ़र से गुज़र रहे हैं, इस दौर से गुज़र रहे हैं, या जो अभी इससे भी कम उम्र के हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से, किस तरह से वो अपने इन चैलेंजेस को फेस करें, कैसे डील करें?
1: जी, मैं उन सभी युवाओं को यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी अगर कुछ भी आपने स्टार्ट करना है तो उस पर एज को ना लाइए, एज कोई फैक्टर नहीं रहता कुछ भी स्टार्ट करने का।
0: जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा मैसेज आपने युवाओं को और जो अभी उस एज में जाने वाले हैं उनके लिए भी ये मैसेज बहुत सही है, क्योंकि जो इस दौर से गुजरेंगे उन्हें पहले से पता होगा, तो उन्हें ज़्यादा मुश्किल जो है वो नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम प्रे करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह से तरक्की करें, आगे बढ़ते जाएँ और अपने सपनों को पूरा करें।
1: जी, धन्यवाद
0: जी। दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं, और जहां हम आज डॉटर डे मना रहे हैं, बेटी दिवस मना रहे हैं, तो ये बेटियों के काबिलियत को सेलिब्रेट करना तो ज़रूर बनता है, और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बात, तो बिल्कुल दोस्तों, इन्हें सम्मानित और इन्हें गर्व खुद पे गर्व महसूस हो, ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम इन्हें जो है एक तरह से उस तरह का सम्मान दे पाएँ, उस तरह से कॉपरेट कर पाएँ, उनका सहयोग कर पाएँ, तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता है। उनकी जो ये आगे बढ़ने की हिम्मत है, जो जुनून है, वो और ज़्यादा जो है वो मजबूत हो जाता है, और ज़्यादा उनकी लगन जो है वो बढ़ जाती है। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए भी ये बहुत प्रेरणादायक बात रही होगी कि सपनों को पूरा करने के लिए कोई उम्र जो है वो हमें नहीं देखनी चाहिए, बस समय और अपनी लगन देखनी है और बस आगे की ओर बढ़ते जाना है। तो आइए इसी बात पे एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, खास करके बेटियों के लिए।

बिल्कुल दोस्तों, बेटियों का सफ़र बहुत ही संघर्ष भरा रहता है, बहुत ही रहस्यमय भी रहता है, क्योंकि जो 20, 22, 23, 24 साल जिस घर में जहां बचपन बिताया हो उसे छोड़कर एकदम से नई गृहस्थी बसाना, नए लोगों के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बेटियां पूरे मन से, लगन से इस रिश्ते को निभाती हैं, इस गृहस्थी को संभालती हैं, और जहाँ कहीं कुछ ऊंच नीच हो भी जाती है तो वो गलतियाँ तो कहते हैं ना, दोनों तरफ से भी होती हैं, कहीं एक तरफ से भी होती हैं, तो रिश्तों को निभाना और उन्हें पूरी तरह से आगे की ओर लेकर चलना, जब दो लोग रिश्ते में बंध रहे हैं तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दोनों को लॉयल्टी के साथ, क्योंकि आज के समय में दोस्तों किसी पे विश्वास करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है, किसी को भी एक सेकंड में धोखा मिल सकता है, किसी को भी एक सेकंड में ज़िंदगी जो है वो पलट जाती है, तो हमें बहुत सोच समझ कर ये ज़िंदगी का फ़ैसला लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, ना किसी प्रेशर में, ना किसी बहकावे में आकर, ना किसी ब्लैकमेलिंग में आकर, क्योंकि ये युवाओं का दौर है दोस्तों, एक टीनेज का जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं बच्चों की ज़िंदगी में आते हैं, जिस तरह से समय बदल रहा है तो बहुत सारी जो है चीज़ें सामने आती हैं। आज एक सेकंड में लोग बेवकूफ़ बना के निकल जाते हैं, हमें पागल बनाकर निकल जाते हैं, तो किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए, बहकावे में नहीं आना चाहिए, सुनिए सबकी लेकिन समझ अपनी यूज़ कीजिए और ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, नहीं तो एक फ़ैसला जो है हमें पूरी ज़िंदगी भर का पछतावा जो है वो देकर चला जाता है और फिर हम कुछ नहीं कर पाते। एक तरफ मायके की रिस्पेक्ट होती है, एक तरफ अपनी भी रिस्पेक्ट होती है, तो ना हम कुछ बोल पाते हैं ना कुछ हम कर पाते हैं, तो सोच समझ कर फैसला लिया जाए तो सब बेहतर हो सकता है, ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। तो इन्हीं खूबसूरत सी बातों के साथ आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के एक और खूबसूरत से गीत की ओर।

दोस्तों, सोनू निगम और उनके साथियों की आवाजों के साथ कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत आप सभी तक पहुंचाया आप सभी के अपने रेडियो दोस्त रचिका ने। तो आइए दोस्तों, इसी गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके और आप सभी को लेकर चलते हैं जानकारियों की ओर। जी दोस्तों, तो जहां हम बात करते हैं मौसम बदलने की, तो अभी फिलहाल तो खैर मानसून जाने की विदाई का समय है और साथ ही बात करें तो बहुत सारे जो है डर भी हमारे साथ रहते हैं बरसात के मौसम में, और उसी पे हमने बात भी की थी कि सांप का खतरा जो है वो सबसे ज्यादा रहता है। तो एक जानकारी की ओर आप सभी को रुख करना चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि अक्सर चीजें जब हमारे सामने आती हैं तो हो सकता है कि जब हम हड़बड़ी में अनदेखा करते हैं चीजों को तो गलती से क्या पता हमारे साथ भी यही घटना घट जाए। तो दोस्तों, सांप देखने जाने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सांप को साथ लेकर कई किलोमीटर का सफर तय करे तो ये चौंकाने वाली बात है। जी हाँ, ऐसा ही एक जो है घटना हमीरपुर जिले में सामने आई है, जब एक बाइक सवार ने सांप के साथ 10 किलोमीटर का सफर तय किया। इस सफर में बाइक सवार को पता ही नहीं था कि वे एक खतरनाक जीव के साथ सफर कर रहा है। जिस बाइक की सीट पर व्यक्ति बैठा था ठीक उसी के नीचे करीब 6 फीट का सांप कुंडली मार कर बैठा हुआ था। व्यक्ति बाइक को रिपेयर करवाने के लिए अनुस्थित एक एजेंसी में पहुंचे। इस दौरान जब सीट को खोला गया, अंदर बैठे 6 फीट के लंबे सांप को देखकर होश उड़ गए। जहां सांप बैठा था उसके आसपास कई बार मैकेनिक हाथ लगा चुका था। सांप को देखकर सभी

सहम गए और डर का माहौल बन गया। जी दोस्तों, तो इसी तरह से होता है कि अक्सर हम हड़बड़ी में कई बार सुबह जो है घरों से निकलते हैं, चाहे वो खेतों के लिए निकल रहे हैं, चाहे वो ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, चाहे स्कूल के लिए निकल रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे स्कूटी बाइक या फिर व्हीकल्स की ही बात क्यों करें, हम कई बार क्या करते हैं, घर जाते समय शूज जो है वो बाहर ही खोल देते हैं और दोबारा से फटाफट से पहनने की हड़बड़ी में हम पहन के निकल चलते हैं। तो कई बार क्या होता है, शूज के अंदर भी सांप जो है वो छुपकर बैठ जाते हैं। तो कभी भी हम जूते चप्पल पहने तो उसे एक बार देख लें, उसे झाड़ लें अच्छे से, तभी हम उन्हें पहने। और कुछ जो सांप हैं आप सभी जानते हैं, घरों के अंदर गर्म जगह को ढूंढते हैं, तो वो बेड पे पहुँच कर चद्दर वगैरह के अंदर छुप जाते हैं, कंबल वगैरह के अंदर छुप जाते हैं। तो हम सोते टाइम भी अपने बिस्तर को अच्छे से झाड़ लें, अच्छे से उसे देख लें, तब आराम से सो सकेंगे। नहीं तो कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, क्या ना हो जाए। तो सावधानी जो है हमारे हाथों में है, और जब कुछ घटना घट जाए उसके बाद की जानकारी तो आप सभी तक पहुंचाई ही है। और भी बहुत सारी जानकारी है या अवेयरनेस से जुड़ी कुछ बातें आप सभी तक ज़रूर, जैसे हम तक पहुंचेंगी हम आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी सेफ्टी और हम सभी की सेफ्टी एक ही बात है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर हम व्हीकल भी घर से लेकर जा रहे हैं तो उसे पहले एक बार अच्छे से चेक कर लें, देख लें, ताकि कोई घटना जो है वो ना घटे और हमारी जिंदगी सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके। तो इन छोटी छोटी सी बातों का ज़रूर ध्यान दीजिए। ज़रूरी नहीं है सिर्फ बरसात के मौसम में, हर समय हमें इन चीज़ों का ध्यान जो है वो देना चाहिए। जाने अनजाने में कई बार ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो फिलहाल आइए इसी बहुत ही खास जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के एक और गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो 91.2 MHz पर इस समय आप सभी बने हुए हैं और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, बहुत ही प्यारे से इस खूबसूरत से दिन की शुरुआत के साथ और बहुत ही खास दिन आज आप सभी सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। जी दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस भी आप सभी मना रहे हैं, तो आइए अब थोड़ा सा उसकी और नज़र डालते हैं। तो आज ये खास दिन जो हम मना रहे हैं, इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान, रोजगार और सतत विकास में पर्यटन की भूमिका को उजागर करना है। ये वार्षिक आयोजन वैश्विक पर्यटन को सतत विकास लक्ष्यों और जिम्मेदार यात्रा से जोड़ता है। ये विभिन्न देशों और समुदायों में प्रौद्योगिकी, डिजिटल नवाचार और पर्यटकों की बदलती जरूरतों के माध्यम से पर्यटन को नए स्वरूप में लाने के तरीकों पर चर्चा करने का मंच भी प्रदान करता है। जी दोस्तों, तो हम धर्मशाला की बात करें तो यहाँ तो ढेर सारी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं और जिससे पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, लोगों को रोज़गार में हेल्प मिलती है और आखिर में जो है हमारी संस्कृति जो दूर दूर तक पहुंचती है, लोग देखकर हिमाचल की संस्कृति को देखकर वाकई बहुत खुश होते हैं और यहाँ से उसे याद के तौर पे कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाते हैं। तो यही है हमारी विरासत धरोहर, जिसे हमें संजो कर रखना है और आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाना है। तो इसी खूबसूरत सी बात के साथ दोस्तों आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 MHz पर।

दोस्तों सारी उम्र हम खुद को सही साबित करने में उलझे रहते हैं, लोगों की सोच, उनके सवाल और उनकी अपेक्षाओं का जवाब देते देते कब जिंदगी गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। फिर एक दिन एहसास होता है कि सच्चे अपने तो बिना समझाए भी समझते थे और बाकी लोगों को समझाते समझाते हमने अपनी ही कई खूबसूरत पल खो दिए। जी दोस्तों, तो इन खूबसूरत से पलों को सहेज कर रखिए याद के तौर पे। ऐसे तो हम इन पलों को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, इन्हें हम खूबसूरत और ज़्यादा बना सकते हैं अपनों के प्यार के साथ, अपनों के साथ के साथ। जी दोस्तों, तो ये जो कुछ खास दिन होते हैं, कुछ खास पल होते हैं, इन्हें इनमें अपनों के साथ रहकर और ज़्यादा जो है हम इस प्यार को बढ़ा सकते हैं, रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, खासियत को समझ सकते हैं, ये बिना सोचे कि चार लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये सोचते रहेंगे तो जिंदगी के जो कीमती पल हैं वो हाथों से ऐसे ही निकलते जाएंगे। तो बिल्कुल ये कुछ खास बातें और कुछ खास जानकारियां आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश रहती है और समय धीरे धीरे आपसे दूर जाने का भी हो चला है। फिलहाल आइए जाते जाते एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और 10:58 हो चुके हैं जी दोस्तों। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये हमारी बातचीत का सिलसिला रहता है और साथ ही मनोरंजन का और साथ ही कुछ खास जानकारियों का। तो अब धीरे धीरे समय जो है वो बढ़ता जा रहा है आप सभी से अलविदा लेने की और तो बिल्कुल दोस्तों इन्हीं कुछ खास बातों के साथ दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपनेपन की।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्पदंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्पदंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्पदंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: पता नहीं, उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच को मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दे।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ। मैं तो अच्छा हूँ, कईयों को लगता है ना ये। भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। ये होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्रीराम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
10: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
9: हाँ बोलो।
10: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
9: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
10: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
11: गजब बेइज्जती है।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द की ने घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों
4: बैठा
5: है?
4: पता नहीं, उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टिव, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए।
5: जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
5: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
6: यूर अ जीनियस?
5: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
7: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
8: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। ये होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्रीराम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
9: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
10: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
11: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
10: हाँ बोलो।
11: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
10: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
11: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
6: गजब बेइज्जती है।

0: श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप सभी हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये है एक स्पेशल कार्यक्रम और आज का ये सफर हम तय करने वाले हैं वंडर बंजारा जी के साथ। तो वंडर बंजारा इनका ऑफिशियल नाम है लेकिन वैसे इन्हें कहते हैं मनीष वर्मा। उम्मीद करती हूँ आज आपके साथ आपके जीवन की जर्नी उतनी ही मजेदार रहेगी जितना कि हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं और दिल को सुकून बहुत देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने अपने कई सारे ब्लॉग्स में हमें बताया है कि आप दिल्ली में रहते थे और दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हुए, तो सबसे पहला मेरा जो सवाल है ना आपसे वो ये है कि ऐसा क्या आपको खास दिखा केवल धर्मशाला में, क्योंकि जाने को आप कहीं भी जा सकते थे, बहुत सारे जगह है, बहुत सारे पहाड़ जैसे कुमाऊं गढ़वाल कहीं भी जा सकते थे, हिमाचल में भी आप डलहौजी चंबा मनाली कहीं भी रह सकते थे, लेकिन धर्मशाला में ही ऐसा क्या आपको दिखा कि आप यहाँ पर आए?
1: देखिए ज्योति जी, मैं इससे पहले धर्मशाला शिफ्ट होने से पहले मैं घूमा सारी जगह, मनाली भी मैं गया, डलहौजी जैसे अभी आपने बात करी, चंबा डलहौजी खजियार में सारा घूमा, लद्दाख भी मैंने कर रखा था
0: जी।
1: बट धर्मशाला एक ऐसी जगह है जो आपको जो खिंचाव धर्मशाला में है, जो सुकून धर्मशाला में मुझे महसूस हुआ वो और जगहों पर नहीं हो पाया। दिल्ली में मैं काफी साल रहा, जन्म मेरा दिल्ली में हुआ
0: जी।
1: बट जब मैं 2020 में धर्मशाला घूमने के लिए आया और उससे पहले कई जगहों पे घूमा तो मेरे को एक कंपैरिजन पता लगा कि कितनी अलग ये जगह है, यहाँ की सादगी लोगों में और यहाँ की वातावरण में जो एक अलग ही महक है और जो बहुत सिंपलिसिटी है वो मेरे को बड़ी अच्छी लगी। तो ये मेन कारण था कि मैं 2020 से 21 तक कई बार धर्मशाला आता रहा और उसके बाद फिर मेरा जो सपना था कि चलो मैं धर्मशाला शिफ्ट ही हो जाता हूँ, क्योंकि मैं फ्रिक्वेंटली दिल्ली से यहाँ आना 500 किलोमीटर बहुत लंबा सफर होता है, 500 किलोमीटर आना और जाना। फिर उसके बाद मैंने सपना बनाया कि मैं सितंबर में यहाँ पे शिफ्ट हो गया। फिर
0: अच्छा मैं एक बात जानना चाहूंगी कि देखिए ये तो आपका सपना था ठीक है, लेकिन आपके साथ आपकी फैमिली भी थी तो वो क्या मान रहे थे इस बात को कि वहां से यहाँ शिफ्ट, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी वाले जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं ना, वहां से एक ऐसी जगह पर जहाँ पे थोड़ी सी लाइफ जो है वो स्लो गोइंग है, जब फैमिली को आप लेकर आए तब क्या उनका था कि भाई वो आए आपके साथ में, और जब वो आए कहीं उनको भी आप शायद घूमने फिराने के लिए पहले लेकर आए होंगे ना कि थोड़ा सा देखिए कि कैसी जगह है, तो उन्होंने एग्री किया?
1: शुरू में दिक्कत हुई, पहले मैंने सोचा कि भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आपके साथ पूरा परिवार होता है, बच्चे होते हैं, दो बेटी है मेरी, छोटे थे बच्चे उस टाइम 2021 में, क्योंकि छोटी बेटी मेरी काफी छोटी थी, 2 साल की थी उस टाइम, तो समझाना मुश्किल था। और फिर मैं इनको घुमाने के लिए लेके आया, इनको मैंने बताया नहीं कि मेरा ऐसा सपना है यहाँ पे शिफ्ट होने का, ज्योति भी नाम है उसके, मेरी वाइफ का ज्योति नाम है, तो उसको लेके आया मैं यहाँ पे बच्चों के साथ में, और कुछ दिन हम यहाँ पे रहे, जैसे एक टूरिस्ट आता और घूमता है मैक्लोडगंज धर्मशाला कुछ मंदिरों में लेके गया, फिर दोबारा मैं उसको कुछ महीने बाद लाया, 1-2 महीने बाद, और जब लाया दोबारा तब मैंने उसको यहाँ आके अपना बताया कि यार मेरा यहाँ पे शिफ्ट होने का मन है, और मैं जानता हूँ मुश्किल है, क्योंकि बच्चों को, बड़ी बेटी को मैंने वहां स्कूल में डाल रखा था, छोटी बेटी तो उस टाइम प्ले स्कूल में थी, काफी छोटी थी
0: जी।
1: फिर मैंने अपनी मदर से बात करी, फादर से बात करी, तो सबने यही कहा कि तू बार बार जब वहां जा रहा है तो इतनी अच्छी वो जगह लग गई, तो तेरी आत्मा वहीं बस गई है, तो तू ट्राई क्यों नहीं करता। और ये जब इंसान का कोई सपना होता है अगर वो उसको पूरा नहीं करता तो मुझे लगता है कि जीने का कोई महत्व नहीं रह जाता उस टाइम। अगर मैं वही सपना लेके दिल्ली में रहता डेली मैं ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, 2 घंटे के जाम में फंस रहा हूँ, कभी मैं 1.5 घंटा जाम में फंस रहा हूँ, और मेरा ऑफिस मेरे घर से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पे था। 8 किलोमीटर की अगर बात करूँ, धर्मशाला में पहुंचने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं, हद से आधा घंटा, दिल्ली में मैं 2-2 घंटे जाम में फंसा रहता था, तो मेरा इतना टाइम वेस्ट होता था, ऊपर से जो फ्रस्ट्रेशन होती थी जाम में फंसने की, पॉल्यूशन की, क्राइम की, इन चीजों की, तो मुझे बड़ा मतलब अंदर से ये भी रहता था कि मैं मानता हूँ वह सुविधाएं ज्यादा है, मैं मानता हूँ वह हॉस्पिटल ज्यादा है, स्कूल ज्यादा है, मॉल्स ज्यादा है, पोर्टर, ये चीजें बहुत सारी कंपनीज वहां पे बहुत ज्यादा है यहाँ के मुकाबले, टैक्सी सर्विस की बात करूँ या रैपिडो की बात करूँ, जैसे कि हर चीज फोन पे हो जाती है, बट मुझे लगता है कि ये चीज ना हमें कहीं ना कहीं इंटरनली इम्पैक्ट भी करती है, क्योंकि इंसान, मेरी जिंदगी वहां ये हो गई थी कि मुझे कुछ खाना भी है अगर तो मैंने अपना फोन लिया और स्विगी से ऑर्डर कर दिया, जोमेटो ऑर्डर कर दिया, टैक्सी बुक करनी है, बाइक बुक करनी है, कहीं सामान भेजना है, हर चीज मेरी फोन से हो रही है, मूवमेंट एक्टिविटी जीरो है, क्योंकि इंसान के पास टाइम ही नहीं है, वो सुबह जा रहा है, घर से 8 बजे निकलता था, मैं रात को 10 बजे घर पहुंचता था, तो इस चीज से मुझे बहुत, मैं उस टाइप का इंसान हूं जो नाइट लाइफ एंजॉय नहीं करता, जो दिन में खुश रहता है और उसको चाहिए कि एक सुकून भरी जिंदगी, पैसा हर इंसान कमा सकता है और दिल्ली में मैं जानता हूं कि यहां के मुकाबले पैसा बहुत ज्यादा है, मैं शायद बहुत ज्यादा कमा भी लेता, यहां थोड़ा कम कमा पाऊंगा बट ज्यादा जी पाऊंगा, बस यही मैंने अपने घर वालों को समझाया, ज्योति को समझाया पहले, जब ज्योति समझी तो बच्चे तो ऑब्वियस है समझेंगे ही। फिर जब मैंने उनको यहाँ का और दिल्ली का कंपैरिजन दिखाया कि बेटा यहाँ रहो हफ्ता 10 दिन और फिर दिल्ली रहो, जब उन्होंने मुझे खुद कहा कि पापा जमीन आसमान का फर्क है यहाँ और वहां में, तब मैंने ये स्टेप लिया और मैंने यहीं पे यूएल में एक घर लिया था फर्निश्ड, एक आर्मी रिटायर्ड अंकल का, तो वहां हम रहे 1.5 साल और उसके बाद हम ऐसा हो गया कि हमें दिल्ली जाना मतलब अच्छा ही नहीं लगने लगा, अपने घर सोचो यहीं पे। वो
0: कहने का मतलब ये है कि काफी लंबा स्पैन आपने लिया फैमिली के साथ कि हम मतलब परमानेंट यहाँ शिफ्ट।
1: बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, बट अब सब कुछ सही हो गया, बच्चे भी पढ़ रहे हैं।
0: तो देखिए दोस्तों, इतना आसान नहीं है कहीं से शिफ्ट होना और कहीं और जगह पर जाके बसना। आप जो लोग इस चक्कर में हैं पड़े हुए, तो देख लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से,
1: नॉट अ इजी टास्क, बहुत मुश्किल है।
0: तो हम उस पर हम बाद में आएंगे जरूर कार्यक्रम में, लेकिन पहले ना अब हम एक गीत सुन लेते हैं आपके पसंद का।
1: मेरे को एक गाना बहुत अच्छा लगता है और मैं अक्सर सुनता हूँ, मेरी प्लेलिस्ट का नंबर 1 गाना है ये, मुसाफिर हूँ यारो न घर है न ठिकाना।
0: मुझे ऐसा लगता है कि आपका ना नाम, ये जो आपने वंडर बंजारा रखा है ना, ये मुसाफिर होना चाहिए था। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद से वो गीत।
1: धन्यवाद।

0: तो दोस्तों, मुसाफिर वैसे हम सभी हैं। अब जिंदगी में आए हैं तो अपने अपने काम करते चलेंगे और फिर एक दिन हम रुखसत भी हो जाएंगे, लेकिन जब तक हैं तब तक तो हमें जीना ही है ना। तो ये जो मुसाफिर हैं, आगे क्या कहना चाहते हैं? 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं। एक स्पेशल पॉडकास्ट हम कर रहे हैं वंडर बंजारा जी के साथ। और अब हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि आपका जो नाम है वो मुसाफिर होना चाहिए था, लेकिन आपको ये कैसे क्लिक किया कि मैं वंडर बंजारा के नाम से कुछ लोगों के सामने जाता हूँ, उनको बताता हूँ, और जो भी कुछ आप बता रहे हैं दिखा रहे हैं उस पे हम बाद में आएंगे, पहले आप अपने नाम के बारे में बताएं।
1: मेरा कोई ऐसा कोई वो नहीं था सपना कि नाम ऐसा हो कि लोगों को याद हो, मेमोरेबल हो। ये मेरी जिंदगी से जुड़ता हुआ नाम है। वंडर का मतलब होता है कि एक गुमंतु कह सकते हैं, अनोखा कह सकते हैं, और बंजारा होता है कि जिसका कोई एक ठिकाना नहीं होता। मेरी लाइफ भी जो होती है ऐसी ही है, क्योंकि मैं जब घूमने निकलता हूँ तो मेरा कुछ प्री प्लान नहीं रहता। जैसे कि लोग हर चीज लिखते हैं कि भाई आज यहाँ जाना है, ये करना है, इस कैफे में जाना है, तो मेरा होता है कि मैंने बाइक स्टार्ट करी, मैं क्लॉक टावर तक पहुंचा और मैं सोचता हूँ कि अब इस तरफ मुड़ना है कि उस तरफ मुड़ना है, मैकलो जाना है कि पालमपुर साइड। तो मेरा रैंडम लोकेशन मुझे पसंद है, और मुझे बहुत हिडन लोकेशन जहाँ क्राउड बहुत कम होता है, मुझे ऐसी जगह पसंद है। वहां मैं 1 घंटा 2 घंटे बैठता हूँ शांति से, कभी रेडियो गुंजन सुन लेता हूँ, तो कभी कुछ मैं अपने कुछ प्लेलिस्ट के मेरे सॉन्ग है पुराने तो वो सुन लेता हूँ। तो बस इसी के ऊपर सोच के मैंने अपना नाम जो है वंडर बंजारा रखा, और मेरे को पसंद है ये नाम क्योंकि ये मेरी लाइफ से बहुत मैच करता है।
0: जब शुरुआत में ना मैंने देखना शुरू किया था और कहीं पर मुझे क्लिक किया कि ये हमारी ही एरिया की कहानी है जो भी आप दिखाते थे, तो उस तरीके से मैं आपके साथ जुड़ी। ऐसे ही लोग भी जुड़े होंगे, क्योंकि जब अपना एरिया नजर आता है और हम उसको हमेशा ही देख रहे हैं, लेकिन हम खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं उसके बारे में नहीं, क्योंकि हमें बताया कि सब लोगों को बताया कि हम लोग यहाँ रहते हैं, ये ऐसा एरिया है वैसा, लेकिन आपके लिए वाकई में वो एक अलग सी चीज थी। तो आप उसको अपने कैमरा में शूट करने लगे, धीरे धीरे आप बताने लगे, तो आपने आपको कब लगा कि मैं ये वाला काम भी करूँ?
1: मेरा देखो, मैं वैसे बेसिकली आपको पता ही है कि मैं वेबसाइट डेवलपर, सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग पे प्रोफेशनल हूँ। हाँ, तो जब मैं घूमना शुरू करा तो मैंने ये चीज नोटिस करी कि मुझे लगता है कि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत शुरू से सपना लेके आ रहा 2021 से कि मैं रील्स बनाऊ या मतलब लोग मुझे जाने, मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था। बट मैं जब घूमता रहा तो मुझे अंदर से ये चीज हिट करती थी कि लोग भी ये चीज देख सकें। और मुझे कई बार ऐसे मैसेज आते थे जब मैंने अपना चैनल शुरू करा था, 2 साल हुए, तो लोग मुझे कहते थे कि यार आप कितने किस्मत वाले हो, हम धर्मशाला में जन्म लेने के बाद हम दिल्ली शिफ्ट हो गए, कोई दुबई शिफ्ट हो गया, अपने घर वापस नहीं आ पाता, और आप दिल्ली छोड़ के हमारे घर पे हमारी जगहों की वीडियो डाल रहे हो, हमें इतना अच्छा लग रहा है, हमारी पुरानी यादें ताजा हो रही है कि हम योल देख पा रहे हैं, कोतवाली देख पा रहे हैं। तो ये चीज जब मुझे क्लिक करी तो मुझे लगा कि मेरे को वो सब कुछ उनको दिखाना चाहिए। लोगों की फरमाइश पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। कोई मुझे कहता है कि मुझे भाई बड़ोल देखना है। अच्छा। अभी पीछे एक भाई का मैसेज आया, वो दुबई में है तो श्याम नगर रहते थे, उनको श्याम नगर देखना था, मैंने वीडियो डाली। एक का आया यहाँ जगह आगे है नगरी, तो वो कह रहे कि भाई प्लीज नगरी की वीडियो बनाओ, तो मैंने अपनी लिस्ट में लिखा हुआ है मैं नगरी जाके वीडियो। तो बस ये चीजें, मैंने लोगों का जो प्यार देखा धर्मशाला के प्रति, जो यहाँ से चले गए हैं, कईयों के घर वाले यहाँ रहते हैं, माँ बाप यहाँ रहते हैं, कईयों की वाइफ यहाँ रहती है तो वो पति वहाँ जॉब कर रहा है, तो ये चीज मुझे देख के लगा कि मैं अगर वो उनके घर यहाँ पे रहता हूँ तो उनके लिए कुछ कर सकूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी।
0: यहाँ पे ना मैं आपसे एक बात और करना चाहती हूँ कि कुछ आपके ब्लॉग्स के नीचे मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े थे।
1: हाँ।
0: कि अब आप कह रहे हैं कि दिल्ली मतलब रहने लायक उतना नहीं रह गई है क्योंकि वहां पे पैसा है, लेकिन जिंदगी शायद कम होती चली जा रही है ना, लेकिन अभी भी दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनमें से कुछ लोग ऑफेंड भी हुए वहां पर, कुछ उन्होंने लिखा भी कि भाई अब आप चले गए उसका मतलब ये नहीं है कि भाई सारे लोग ही शिफ्ट हो जाएं, और कुछ लोग जो हैं वो इंस्पायर होकर शिफ्ट होना भी चाहते हैं, जैसे हमने पहले कहा कि आसान नहीं है ये सब कुछ, तो उसको आप फिर कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं?
1: ये इंसान से इंसान पर डिपेंड करता है। देखो इसमें ज्योति जी क्या मेन चीज है, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि पैसा वो कमाते हैं दिल्ली में, बट उनका इंटरनली, जैसे पीछे एक मुझे पटियाला से मैसेज आया था, एक भैया का अंकल ही है, वो काफी एज के, अभी 60 साल उनकी उम्र है, इस बात को 2 महीने हो गए, वो कह रहे हैं कि मैंने ये सपना हिमाचल शिफ्ट होने का 40 साल की उम्र में दिखा था बेटा, अब मेरी उम्र 60 साल है, मेरे बच्चे सेट है, और मैं अभी एज में आ गया हूँ कि मैं यहाँ से शिफ्ट नहीं हो सकता। तो कई लोग दिल्ली में भी खुश है, ऐसी बात नहीं कि दिल्ली में 90% हो सकता है लोग खुश हो, 10% चाहते हो निकलना। जैसे कि मेरा एक ब्रदर भी है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, वो उसकी बिजनेस भी है वहां पे, कंपनी है, बट इंटरनली वो चाहता है कि भैया मैं आप जैसी लाइफ जी पाऊं। तो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सारे शिफ्ट हो जाओ, बट अगर जो होना चाहता है शिफ्ट, अगर आपने सपना देखा है तो उस सपने पे आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप दिल्ली में खुश हो, देखो दिल्ली बुरा नहीं है, मेरा जन्म वहां हुआ, मेरी पढ़ाई वहां हुई, मेरी जन्मभूमि दिल्ली और कर्म भूमि भी कह सकते हो आप दिल्ली है, बट आत्मा यहाँ मिल गई तो मैं यहाँ आ गया। जरूरी नहीं है हर एक को शिफ्ट होना है, बट जिसका सपना है यहाँ शिफ्ट होने का, या हिमाचल में कहीं भी, उत्तराखंड में, हिमाचल में, जहां पहाड़ी इलाके में, अपने सपने पे काम करो और सपने को सपना मत रहने दो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। कोविड के टाइम पे कितनी दुनिया चली गई अपने सपनों के साथ। तो बस मैं इसी मोराल पे जीता हूं कि जो मैं सोचता हूं मैं वो करना चाहता हूं, और मैं किसी रिग्रेट के साथ इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। एटलीस्ट एंड टाइम पे मुझे ये पता हो कि मैंने अपने सपने पूरे करे। बस
0: हमने सुना लिए सपने निगाहों में। अगला गीत कौन सा है आपकी प्लेलिस्ट?
1: अगला गीत मैं एक बड़ा मेरा एक पसंदीदा सॉन्ग है जिंदगी एक सफर है सुहाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप प्लीज वो जरूर चलाइए। ये सॉन्ग मैं बहुत सुनता हूँ पहाड़ों पे बैठा अकेला, और बहुत ज्यादा मुझे ये पसंद है।
0: चलिए जिंदगी के सफर में हम आज चले हुए हैं और सर के साथ पंडर बंजारा जी के साथ, तो सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत सा गीत।

0: वाकई में जिंदगी एक बहुत सुहाना सफर है अगर हम इसे जीना सीख लें तो, कि कैसे जीना है। स्पेशल ब्रॉडकास्ट हम आज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वंडर बंजारा जी के साथ, मुनीश वर्मा जी हैं। अब हम चलेंगे इस बात पर कि जब आप वहां से शिफ्ट हुए
1: जी,
0: तो कुछ तो कठिनाइयां आई ही होंगी क्योंकि फैमिली आपकी मान गई, वो एक अलग बात है, लेकिन जब रियलिटी पे कहीं रहना होता है, कुछ करना होता है, तो क्या क्या वो कठिनाइयां थी? ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही आपको प्रॉब्लम थी, है ना, लेकिन यहाँ पर आकर के भी आई होंगी, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा शॉर्ट में जानेंगे।
1: बिल्कुल, देखिए मैंने अपना माइंडसेट, पहली चीज है कि मैंने अपना माइंडसेट तैयार कर लिया था, क्योंकि मुझे पता है हर जगह एक ऐसी नहीं होती कि वहां पे सब कुछ ही पॉजिटिव हो। कहीं भी मैं चला जाऊं, चाहे मैं स्विट्जरलैंड भी क्यों ना चला जाऊं, तो यहाँ पे आने के बाद जब पहली चीज थी मकान ढूंढना, सबसे मुश्किल चीज जो मुझे आज तक की लगी, वो धर्मशाला में रेंट पे अपने सपनों का घर ढूंढना काफी मुश्किल है, क्योंकि एक आउटसाइडर यहाँ पे मकान जमीन नहीं ले सकता, कोई ऑब्लिगेशंस होती हैं ऐसी जो हिमाचल का इंसान ही लैंड ले सकता है। तो रेंट पे अच्छा घर मैंने ढूंढा, और पहला जो मैंने स्टेप लिया वो इनिशिएटिव ये लिया कि मैं घर अपना जो है यहाँ पे फर्निश्ड लूंगा, अपना सामान लेके नहीं आता, कि इन केस अगर बच्चों का मन नहीं लगा, उस टाइम अक्टूबर का महीना था, ठंड शुरू हो जाती है और बच्चे छोटे थे, तो मुझे लगा ये भी एक बार मन में डर था कि छोटी बच्ची को यार ठंड ना लगे, क्योंकि दिल्ली के एटमोसफेयर और यहाँ के एटमोसफेयर में जमीन आसमान का फर्क है। तो पहली चीज है कोजी सा अच्छा सा घर ढूंढना, जो मैंने ढूंढा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे को पता लगा यहाँ पे स्कूल्स कैसे हैं, स्कूल्स देखे, बच्चों को स्कूल में डाला, फिर तीन तरह के बोर्ड है यहाँ पे, ICSE बोर्ड है, CBSE है, HP बोर्ड है, तो बच्चों को स्कूल में डाला, फिर मैंने हॉस्पिटल्स पता करे, उसके बाद धीरे धीरे अपना सेटअप करा। अच्छी बात यह है कि मैं वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करता था, तो मेरे को मेन चीज थी कि इंटरनेट अच्छा चाहिए। इंटरनेट यहाँ पे अच्छा चलता है, बहुत सारे मेरे को लोग सवाल पूछते हैं कि यार धर्मशाला में इंटरनेट चलता भी है, क्योंकि आउट लोकेशन है, रिमोट लोकेशन है, तो देखो यार इंटरनेट यहाँ पे जियो और एयरटेल बहुत अच्छा चलता है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, फाइबर डली हुई है, और जहाँ पे फाइबर नहीं है वहाँ पे एयर फाइबर अवेलेबल है।
0: वैसे आपने पार्ट्स में अपने व्लॉग्स में भी कभी यूट्यूब पर, कभी फेसबुक पर, कभी इंस्टा पर, ये सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन क्या होता है ना, वो एक मतलब पूरा कनेक्ट नहीं कर पाते ना लोग कभी, तो इसलिए हम दोबारा से आपसे यहाँ से जानना चाह रहे हैं कि एक फुल पूरे प्रोग्राम में, फुल फ्लैश में लोगों को ये सब कुछ सुनने को मिले कि वाकई में ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत आसान होता है, मुश्किलें हर जगह होती हैं, है ना, पर हाँ जब हम रहना शुरू कर देते हैं कहीं पर, तो फिर चीजें अपने आप सॉर्ट आउट होती चली जाती
1: है, माइंडसेट बना लेते हैं तो उसके बाद चीजें सॉर्ट हो जाती है अपने आप।
0: अब देखिए आप तो अपना बाइक उठा करके चले जाते हैं घर से, है ना, और आपने कहा कि हमें तो जी मुझे ये भी नहीं पता होता कि मैंने आज कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, तो घर वालों को भी नहीं पता होता होगा।
1: नहीं, घर वालों को मैं ये बता देता हूँ कि भाई वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ, कितना ही बता पाता हूँ, नाम एग्जैक्ट नहीं पता होता मुझे भी और घर वालों को भी।
0: तो आपने जैसा कहा कि आप पहाड़ों से बैठ करके अपना वर्क, बाहर से वर्क करते हैं या वर्क फ्रॉम होम कह लें उसको, तो उसमें भी तो कुछ चुनौतियां आती होंगी, जैसे आपने कहा कि नेट मुझे मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे अचानक से बारिश शुरू हो गई, है ना, तो तब नेट वैसा रहता है कि?
1: वही मेन चीज है, मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा, ये सवाल थोड़ा सा आपने जो पूछा है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखो हमेशा एक एटमोसफेयर नहीं रहता भाई कहीं पे भी, धर्मशाला में खास करके यहाँ पे बिल्कुल प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। कई बार मेरे से मेरे फॉलोअर कई बार के रोज के 10 मैसेज आते हैं, वो पूछते हैं कि अगले महीने कैसा मौसम होने वाला है, तो ये बहुत मुश्किल है प्रिडिक्शन। अगले महीने की बात क्या, मैं अगले एक घंटे बाद नहीं बता सकता, सर्दियां हो, गर्मियां हो, बारिशें हो, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है,
0: इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज मौसम बड़ा बेईमान।
1: छतरी यहाँ पे आपको रखनी है अपने साथ हमेशा, 12 महीने या बारिशों का कुछ नहीं पता, मेरी गाड़ी में, मेरे घर पे, मेरी बाइक पे, मेरे बैग में हमेशा अम्ब्रेला और पोंचू यहाँ पे जरूर रहता है। और नेट की बात करूं, अगर मैं कहीं पहाड़ों पे बैठ के काम कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 सिम होती है, अगर जियो नहीं चलती तो एयरटेल चल जाता है, ऐसा होता कई बार, तो काम हो जाता है। बट कोशिश मैं ये करता हूँ कि जब बारिशों का मौसम होता है कार से ट्रैवल करना ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि बारिश में ना बहुत बुरा हाल होता है, यहाँ आप बाइक नहीं चला सकते, और बारिश भी यहाँ पे ऐसी होती है कि छतरी के नीचे भी इंसान पूरा गीला हो जाएगा, टेढ़ी बारिश होती है, तो ये मेन मेरे को यहाँ पे वो लगता है कि थोड़ा।
0: तो आपने कहा 2 सिम रखता हूँ, मेरा कंसर्न ज्यादा ये था कि चलो काम आप कह रहे हो जाता है, हमें फैमिली के साथ भी कॉन्टेक्ट रखना जरूरी होता है ना, कि मैं यहाँ पे इन हो गया हूँ तो अभी
1: मैं कॉल पे ज्योति से कनेक्ट रहता हूँ कि भाई यहाँ पीछे मेरी कई रील्स आपने देखी होगी, एक बार तूफान में मैं खरोता में फंस गया था, तो होता है हर चीज दोनों तरफ देखना होता है, और मैं सोलो ट्रैवलर हूँ तो अपने आप ही सब कुछ देखना, कहीं अगर फंसता हूँ तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है मेरे साथ कई लोग मुझे कहते हैं कि सोलो ट्रैवल डिफिकल्ट है,
0: तो सोलो ट्रैवल की बात आपने की ना
1: जी,
0: तो मैं भी उसी पर आना चाह रही थी कि जो सोलो ट्रैवल जैसे आपने बोला कि आसान है, जब शुरुआत में आप आए और आपको लगा कि कुछ लोगों से हम कनेक्ट करते हैं, तो आपने एक बाइक राइडिंग का शायद कुछ ग्रुप सा बनाना चाहा था, और मुझे याद है कि उसमें पहली बार मैं भी गई थी, शायद वो पहला ही वो था, है ना,
1: एक ग्रुप टूर हुआ था।
0: हाँ, एक ग्रुप टूर हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे लगा शायद वो कंटिन्यू रहेगा, बट समाओ मुझे नहीं पता किस वजह से वो नहीं हो पाया।
1: बिल्कुल,
0: उसकी पीछे की वजह बताएं आप लोगों को, क्योंकि उसके साथ बहुत लोग जुड़ना चाह रहे थे।
1: हाँ, मेन चीज क्या है कि मैं चाहता था कि एक बहुत अच्छा ग्रुप बने यहाँ पे और काफी लोग जुड़े, बट मेन कंसर्न मेरे को ये लगा कि लोगों को टाइमिंग का बड़ा इशू रहा, कि मैं जैसे मैं एक अर्ली बर्ड हूँ, मेरे को आप बोलोगे मैं 4 बजे, मैं 3 बजे उठ जाता हूँ, मतलब अगर आपने आज जैसे मुझे बुलाया 3 बजे तो मैं 2:45 ही लगभग आ गया था। तो हर इंसान का वो शेड्यूल नहीं होता, तो कई बार लोग, मैं जैसे 8 बजे बोलता था कि भाई हमारी दिल्ली में मैंने काफी सारे ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे, कफीरा राइडर्स करके भी है वो, तो वहां टाइमिंग एक फिक्स होता है कि 8 बजे फ्लैग ऑफ हो जाएगा और हम निकल जाएंगे, हद से आप 10 मिनट वेट करते थे। यहाँ मैंने कई बार आधा घंटा वेट करा, लोग आ ही नहीं रहे, मेरे को एक दिन पहले बोल दिया कि हम आएंगे, जब 15 लोगों ने हाँ बोल दी तो 3 लोग आ रहे हैं, तो ये मुझे कहीं ना कहीं चीज ना एक अजीब सी लगी। और दूसरी बात, जब मैं बोल रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि आपने हेलमेट और एटलीस्ट अपने ग्लव्स वगैरह पहन के आना है, किसी के साथ मिसहैपनिंग होगी तो जो एडमिन ऑफ द ग्रुप होता है वो जिम्मेवार होता है, तो इस चीज का भी मुझे डर था कि भगवान ना करे किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग आई। पीछे आपने देखा होगा रिद्धिमा जो एक लड़की एक्सीडेंट हो गया था, तो वो भी ग्रुप के साथ थी, तो ये एक डर जो रहता है। और हम पहाड़ों पे बाइक चला रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि दूसरे इंसान की एक्सपर्टीज क्या है, सामने एक लड़का, कई बार हिमालय लेके भी आए लोग और वो बिल्कुल एक न्यूबीज टाइप होते हैं, जैसे बच्चों में जोश होता है भगाने का, वो भगा रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो वो मेरे को डर लगता था कि उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो मैं उनके घर वालों को क्या जवाब दूंगा। तो ये सब सोचते हुए, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूं, तो जब मैंने देखा कि एक इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, उसमें कोई ऑफ रोड करना चाहता है तो कोई ऑन रोड, तो मैंने इस चीज को देखते हुए उस चीज को अभी पोस्टपोन कर दिया। मेरे माइंड में ये प्लान है,
0: मतलब अभी करेंगे। हाँ,
1: मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, डेट कंफर्म नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथ जुड़े ग्रुप में वो एक प्रोफेशनल राइडर हो, कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो सामने वाले की जिंदगी की भी, अपनी भी, क्योंकि हमारे पीछे से हमारे माँ बाप जो है वो वेट कर रहे हैं घर पे। ये मेरे को बहुत मेन चीज है कि आपकी जिंदगी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपनी चोट बर्दाश्त कर सकता हूँ, बट मैं दूसरे इंसान मेरे सामने किसी को लगेगी तो मैं उसके घर वालों का जवाब नहीं दे सकता। ये मेरे को मेन चीज है। हम लद्दाख भी करते हैं, मैं, मेरा ब्रदर और एक चंडीगढ़ का फ्रेंड है वो, तो हम बहुत पैक होके, मतलब पूरा अपना राइडिंग गेयर सारा मेरे पास, गेयर्स का पूरा सेटअप है अलमीरा भर के, हम सब कुछ पैक होके चलते हैं, गेयर से लेके हाइड्रेशन पैक से लेके जो राइडिंग बूट्स हैं, अच्छे हेलमेट वगैरह लगा के करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पल्स ऑक्सीमीटर तक होता है हमारे पास। तो मैं चाहता हूँ कि इस लेवल के राइड हो तो मैं एडमिन बनने को तैयार हूँ, बट लो लेवल पे बहुत मुश्किल, ये मेन चीज है।
0: हमने उसमें कुछ ये भी देखा कि लोगों को ये लगा कि अच्छा हम इस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो हमने ये तो शायद
1: देखी हुई है
0: तो वो बीच में से स्किप कर जाते हैं। तो वो जो ग्रुप होता है वो अगर 5 लोगों का होगा तो आते आते वापस दो या 3 लोगों का ही रह जाता है।
1: गलत होता है, क्योंकि आपने जहाँ से शुरू करा है ना वहाँ पे आ गया आप, उसके बाद आपको भले 10 किलोमीटर फालतू जाना पड़े, बट साथ में राइडर्स के जाओ, साथ में आओ, तो एक चेन बनी रहती है, खुशी मिलती है कि हम ग्रुप के साथ चल रहे हैं। तो ये चीज देख के मुझे ज्योति थोड़ा सा ना वो हुआ कि मैं सोलो ट्रैवलर ही बेटर हूँ, क्योंकि सोलो ट्रैवल में ना आपको कोई टेंशन नहीं है, आप दुनिया घूमो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और कोई बाउंडेशन नहीं,
0: किसी का इंतजार नहीं करना। तो फैमिली टाइम फिर कब देते हो?
1: मैंने पूरा एक रोड मैप टाइप बना रखा है, सैटरडे संडे मैं ऑफ रखता हूँ अपनी जो कंपनी है, और सैटरडे मेरे फैमिली का रहता है, जहां बच्चों का या वाइफ का मन होता है, तो पहले से ही फ्राइडे को बता रहे थे कि पापा हमारा आज पालमपुर साइंस सेंटर जाने का मन है, तो सैटरडे हम वहां पहुंच जाते हैं। संडे पूरा मेरा है, संडे मैं एक बंजारा हूं, मैं कहीं भी निकल जाता हूं, ना जाने का टाइम पता ना आने का, तो इस तरीके से मैंने फैमिली का भी, बच्चों की पढ़ाई भी, अभी पेपर चल रहे हैं
0: जी।
1: तो सब कुछ सिस्टमेटिक मैंने कर रखा है कि किसी को भी ऐसा ना लगे कि ये अपनी लाइफ जी रहा और हमें यहाँ ले आया, सबको मैं इक्वल टाइम।
0: हाँ, बंजारा जी का के पसंद से अगला गीत।
1: हाँ जी, मैं एक अगला गीत आपको बताना चाहूंगा और बहुत ही मेरे को ये पसंद है गाना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ये साथ के ऊपर, अभी हम बात कर रहे थे फैमिली की, तो ये साथ के ऊपर ही एक गीत है जो मैं अक्सर अपनी वाइफ के साथ बैठ के सुनता हूँ, कि बच्चे तो छोटे हैं, पुराने गाने नहीं सुनते, और मैं और मेरी वाइफ सुनते हैं।
0: चलिए पहले सुनते हैं ये गीत, फिर आते हैं अपनी बातचीत पर आगे वापस।

0: तो जिंदगी का साथ निभाते निभाते हम भी यहाँ तक पहुंच गए हैं और स्पेशल बातचीत आज हम कर रहे हैं वंडर बंजारा जी के साथ, मुनीश वर्मा। और सर अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए, एक तरफ तो वंडर बंजारा ट्रेवलिंग वाला अंदाज है आपका और दूसरी तरफ आप SEO जैसी टेक्निकल चीज को भी हैंडल करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बना और इसके शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे आपका क्या मतलब मोटिव है? क्योंकि अब मुझे ये भी पता है कि आप कुछ सिखा भी रहे हैं लोगों को।
1: जी, मेन चीज क्या है ज्योति, देखो ट्रैवल अपनी जगह है, घूमना मेरा एक शौक है, एक पैशन है, बट प्राइमरी जो मेरा जो काम है वो मेरा, मैं SEO एक्सपर्ट हूँ। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके द्वारा हम कीवर्ड्स को गूगल पे रैंक करते हैं, जैसे कि कुछ टाइप करते हैं आप तो जो क्वेरी शो होती है। 2010 में मैंने SEO करना शुरू करा था और 2012 के बाद मैंने जॉब करी, फिर 15 तक जॉब करी, 15 में मैंने अपनी कंपनी सेटअप कर ली थी। तो हमेशा से मेरा ये सपना रहा कि मैं कुछ बच्चों को सिखा पाऊं जो सीखना चाहते हैं मेरी स्किल्स, जो सीखना चाहते हैं जो मैं करता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे कीवर्ड्स गूगल पे रैंक कर चुका हूं, काफी सारे मैंने इंटर्न्स को ट्रेन करा और मैं MNC में जॉब करता था दिल्ली में, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट कंपनी से MNC से मेरी शुरुआत हुई थी। तो काफी सारे एग्जीक्यूटिव मेरे पास भी काम करते हैं, दिल्ली में मेरी कंपनी है। तो मैंने इसके लिए एक पर्टिकुलर चैनल बनाया, पहले मैंने कुछ वीडियो वंडर बंजारा चैनल पर डाली थी, बट मैंने पूरा डेडिकेटेड चैनल अलग ही डिजिटल मनीष वर्मा के नाम से यूट्यूब पे अलग कर दिया।
0: अच्छा।
1: उसमें सारी वीडियोस SEO की है, अभी वेबसाइट डेवलपमेंट की वीडियोस बना रहा हूँ, मैं कोर्स बना रहा हूँ पूरा

0: के साथ रह सके, क्योंकि ज्यादातर हिमाचल से लोग जो दिल्ली जाते हैं वो अच्छी सैलरीज के लिए जाते हैं, ठीक है, जाते इसलिए हैं और अपने माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, उनका दिल यहीं बसा हुआ होता है, मैंने ये देखा।
1: हाँ जी।
0: तो वो इस कोर्स के माध्यम से मेरी जो स्किल मैं पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ वो स्किल सीखें, वो भी काम करें, मार्केट में बहुत काम है। मैंने उसके अंदर एसईओ का अभी कोर्स पूरा अपलोड कर दिया है, कुछ वीडियोस अभी रह रही है, वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स आएगा जो मेरी स्किल्स है, सोशल मीडिया का उसमें कोर्स आएगा, वीडियो एडिटिंग में कर लेता हूँ, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, क्लाइंट हैंडलिंग, ये सारी स्किल्स मेरे को तकरीबन 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं पूरा ओपनली शेयर करने वाला हूँ अपने उस चैनल पे, डिजिटल मनीष वर्मा के नाम से चैनल है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और वहां जाके आप पूरी वीडियोस देख सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो अवेलेबल हूँ मैं, कमेंट्स में सबके जवाब देता हूँ।
1: तो पहले मुझे बीच में ये भी पता लगा था कि वो पेड भी था शायद।
0: हाँ, मेंटरशिप पेड मैंने रखी थी, क्योंकि उसमें से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हम आपसे डायरेक्टली सीखना चाहते हैं, जब आप वीडियोस में इतना अच्छा सिखा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप हमें डायरेक्टली सिखाएं अपना लाइफ पे, और आपकी जो भी फीस है आप रखें। तो मेरा ऐसा कुछ प्लान था नहीं पेड मेंटरशिप का, बट उसमें से 20 बच्चों ने इतना ज्यादा मुझे वो करा तो मैंने वो मेंटरशिप शुरू करी, और 20 बच्चों को मैंने सिखाया भी, और वो 20 बच्चे आज काफी बच्चों को क्लाइंट भी मिल गए हैं, और काफी बच्चे देखो वो मेंटरशिप 3 महीने ही खत्म हो चुकी है, बट मैंने उनसे ये कहा था कि बेटा एज अ ब्रदर, एज अ बड़ा भाई, मैं आपको कभी जिंदगी में जरूरत पड़े तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो। आज तक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, सर क्लाइंट मिल गया, वो ये सवाल पूछ रहा है क्या बोले हम। तो अगर किसी की हेल्प कर देंगे तो आपका कुछ नहीं घिस जाता, और जितना आप ज्ञान बांटेंगे ना उतना आपकी किताबों में से धूल हटती है, ये सच्चाई है। तो बस ये मेन चीज है।
1: तो अब एक चीज है, हमें ना लाइफ में शांति चाहिए ना, तो क्या हमारे जो पहाड़ है इसकी शांति ने आपकी ये जो क्रिएटिविटी है एसईओ वाली या फिर आपकी ब्लॉगिंग वाली, इसको और बेहतर बनाने में मदद की है?
0: मेरे को फर्क लगा है, पिछले अगर मैं 4-5 साल की बात करूं तो वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करने से मेरी क्रिएटिविटी इम्प्रूव ही हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या है ज्योति, कि सोलो ट्रेवल करने से और वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करने से ना आपकी इमेजिनेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि जब आप शहर के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आप एक ऐसा सफोकेशन मुझे फील होती थी, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं व्यक्ति से व्यक्ति पर डिपेंड अलग अलग हो सकता है, कभी हॉर्न की आवाज, कभी आप कोई ऐसी न्यूज सुनते हो कि आपका दिमाग वहां लग जाता है, कभी आप बाहर ट्रैफिक में फंस जाते हो, कभी आपको ऐसा मेंटल प्रेशर होता है, क्योंकि जितना ज्यादा शहर में सुविधाएं हैं उतने खर्चे ज्यादा है, मैंने एक चीज देखी, और खर्चों के चक्कर में इंसान भागता ज्यादा है, पैसा ज्यादा कमाना पड़ता है, तो यहाँ पर खर्चे उस लेवल से नहीं है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे उतना शोर नहीं है, उतना पोल्यूशन नहीं है, बीमारियां भी उतनी नहीं है, तो मेरी क्रिएटिविटी यहाँ पे इम्प्रूव हुई है पहले से, और मैं अब ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करने लगा हूँ, मैं एक ऑब्जर्वर बन गया हूँ। मैं किसी जगह पे जाता हूँ, जैसे मैं आज नोरबलिंगा इंस्टीट्यूट गया, वहां काफी देर बैठा, मैंने लोगों को देखा, कोई चेहरे पे किसी के खुशी थी, कोई उदास था, कोई सोच में था, तो अब चीजों को जब आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो एक अलग ही खुशी मिलती है, आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, आप सोचते हो कि लोगों के लिए क्या अच्छा कर सकते हो। तो ये मेरे में फर्क पड़ा है, क्योंकि मैं सोचने लगा हूं अब कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ हिमाचल के लिए। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों ने कूड़ा फेंक रखा होता है, तो मैं कई बार अपने बैग में भी उसको उठा लेता हूँ और कोशिश करता हूँ दिखा के कि कोई ऐसा ना करे, आने वाले टाइम पे ऐसा ना करे। तो ये चीजें बहुत, मैंने दिल्ली में नहीं करी ये चीजें, क्योंकि मैं इतना उस टाइम चहल पहल में फंसा हुआ था कि टाइम ही नहीं मिलता था भाग दौड़ में, बट ये चीजें बेटर हुई हैं जो आपने पूछा है।
1: ठीक है, अब ना एक बात ये है कि जैसे सोलो ट्रैवल जो आपने बात की थी, कुछ लोग करते हैं जैसे आप भी करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है मेल्स की बात अलग है, फीमेल्स की बात अलग है, तो मैं फीमेल्स पे जाना चाहूंगी, अगर कुछ लोग करते हैं, अभी भी कुछ फीमेल्स हैं जो करती हैं और अपने व्लॉग डालती हैं, लेकिन उनके लिए कोई, अगर आप कोई टिप देना चाहें उनकी सिक्योरिटी वाइज या कुछ इस तरह से, कुछ आपने ऑब्जर्व किया हो तो वो आप शेयर कर सकते।
0: मैं देखो अभी रिसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ, एक कोलकाता की लड़की यहाँ पे अभी आई थी, मैं नाम नहीं शेयर करना चाहूंगा, तो मैंने एक रोड की वीडियो डाली हुई थी जो कि नगरी से सुकेरी होके, सुकेरी जगह पड़ती है, पालमपुर सौरभ वन विहार निकलती है, जंगल का इलाका है, तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ की जगह है, मैंने कहा ये बेटा इस वाली जगह, छोटी एज की थी, सोलो ट्रैवल कर रही थी कि मैं कोलकाता से एक महीने के लिए आई हूँ, तो मैंने उनको कहा भी कि ये वाली रोड है, बट आपने, मैंने साथ में ये भी उनको डिस्क्लेमर दे दिया कि अगर आप जाएंगे तो पहले बताओ जाओगे किस पे। उसने कहा मैं ड्राइव करके जाऊंगी, फिर मैंने उससे कहा टाइमिंग क्या है, आप सोलो ट्रैवल करोगे, तो उसने कहा मैं दिन में जाऊंगी, तो मैंने उसको डिस्क्लेमर ये दिया कि पहली चीज अगर आप जाओगे तो आपने बहुत तेज बारिश में नहीं जाना, शाम के टाइम नहीं जाना, और अपने साथ किसी को आपने लोकेशन शेयर कर देनी है, कि कुछ भी हो, देखो पहाड़ों पे लैंडस्लाइड का नहीं पता होता, बारिश है।

0: कई बार डंगा बैठा होता है, आपने देखा है, तो हमें बारिश में रोड का पता नहीं होता आगे गिरी हुई है, पीछे भी कुछ हुए थे हादसे, तो ये मेन चीज है कि सचेत करना भी जरूरी है। और सोलो ट्रैवल जो है वो मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए अलग हो लड़कों के लिए अलग हो, नहीं, आप उस लेवल के ब्रेव होने चाहिए और आपको हर चीज टैगल करनी आनी चाहिए। और कोशिश करो पहाड़ों पे शाम ढलने के बाद अंधेरे में, लोग मैंने देखा अक्सर ट्रैक पे निकल जाते हैं, तो जानवरों का खतरा भी होता है। और जानवरों से अगर आप एनकाउंटर, जैसे मेरे बैग के अंदर एक विसल रहती है हमेशा, अगर मैं शाम के टाइम में अकेला घूम रहा हूं तो मैं जंगल में विसल बजाता हुआ चलता हूं, क्योंकि अगर आप भालू से एनकाउंटर कर देते हो, क्योंकि देखो जानवर का कोई मकसद नहीं है आपको मारने का, जानवर कभी दिन में नीचे नहीं आता या जानबूझ के हमला नहीं करता, आमने सामने जब टक्कर हो जाएगी तो वो हमला करेगा, उसको नहीं पता ना, उसका माइंडसेट आपकी तरह नहीं है। सेम शेर चीते के साथ भी, तेंदुए के साथ भी ऐसा होता है, तो अगर आप शोर मचाते चलोगे तो जानवर को पता होगा कि आप कोई इंसान वहां से आ रहा है। तो शाम के टाइम में ट्रैवल अवॉइड करता हूं, दिन ढलने के साथ ही मैं घर आ जाता हूं। ये मैं लड़कियों के लिए भी बोलता हूं कि वो भी अगर ऐसा करेंगी तो सेफ्टी रहेगी, बस मेन चीज ये है।
1: अब एक गीत होगा या रैपिड फायर होगा?
0: अगला गीत जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है उन बच्चों के लिए और आप सबके लिए भी, हमारे लिए भी, यूं ही चला चल रहा ही, स्वदेश फिल्म का, क्योंकि चलने का नाम ही जिंदगी है और जितना आप चलेंगे और जितना अपने ऊपर से धूल हटाएंगे उतना ही जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जी

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ दोस्तों आप लोग भी बने हुए हैं और स्पेशल पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज हम वंडर बंजारा जी के साथ जो कि हैं मनीष वर्मा जी। मनीष और मनीष में मुझे बार बार
1: सब मेरा नाम बंजारा के नाम से ही सेव करते हैं अपने फोन के अंदर। हाँ। मैंने ये चीज देखी है, पूछी भी है जी। हाँ।
0: अब देखिए आपके पास दो बच्चियां भी हैं, बेटियां हैं ना आपकी, बहुत प्यारी प्यारी सी। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आप क्या उनके लिए क्या कैसा सोचते हैं कि वो नौकरी में जाएं या आप ही की तरह कुछ इंडिपेंडेंट कुछ करें।
1: बिल्कुल, मैं मेन चीज ये है कि देखो मैंने बच्चों के ऊपर कभी भी उनके ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहिए और बच्चे का जो अपना मन है, जैसे मेरी छोटी बिटिया को आर्ट्स का बहुत शौक है, वो मेरी फोटो बनाएगी, बड़ी अच्छी बना रही है इस एज में, 7 साल 8 साल उम्र है तो अच्छी, मतलब उसकी वो आर्ट्स में जाना चाहेगी तो मैं उसको कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा कि तू आईटी फील्ड में जा बेटा, नहीं। बड़ी बेटी कंप्यूटर में बहुत तेज है, मेरा एक लैपटॉप पुराना उसके पास है, वो उस पर प्रैक्टिस करती रहती है। तो बच्चे का जिस चीज में मन होगा, मेरा हमेशा से एक सपना ज्योति रहा था, जब मैंने जॉब करी थी तो मैंने पहले दिन ही बॉस को बोल दिया था, कोई एम्प्लॉई इंटरव्यू क्लियर होते ही बॉस को नहीं बोलता, मैं आपको ये वाक्य ही बताता हूँ। पहले दिन ही मैंने अपने अनुज दुरेजा नाम था उनका, और मैंने उनको बोल दिया था कि मैं 3 साल से ऊपर से जॉब नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ये चीज सोच रखी थी कि जिंदगी भर जॉब भले ही कितना पैसा मिले, उस टाइम सैलरी जितनी होती थी अच्छा इंक्रीमेंट भी मिला, बट 3 साल के बाद मैंने जॉब छोड़ी और कोई एम्प्लॉई पहले मतलब साल के पहले दिन जॉब नहीं छोड़ता। मैंने पहले दिन रेजिग्नेशन दिया था। इसके पीछे कहानी ये थी कि उस टाइम यूट्यूब बड़ा चलन में था, नया नया 2012 की बात है, थोड़ा सा ये आंसर लंबा हो जाएगा, मैं आपको दे सकता हूँ,
0: कोई नहीं।
1: तो एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उसमें एक राजा होता है एक देश में, तो उसको जो बर्ड्स होती हैं वो पकड़ के उड़ाने का शौक था, तो वो बड़े सारे तरह के पक्षी पकड़ता था, उड़ा देता था और देखता था कौन ऊपर जा रहा है। तो एक पक्षी उसने एक दिन उड़ाया तो वो पक्षी उड़ता और गोल गोल घूम के पेड़ की टहनी पे बैठ जाता। वो कह रहा मैं इतने सालों से पक्षी पकड़ रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ, बट वो पक्षी क्यों नहीं उड़ रहा। उसने एक्सपर्ट्स बुलाए, गाँव के एक्सपर्ट आए, सबने कोशिश करी, वो पक्षी थोड़ी देर घूमता फिर बैठ जाता। एक गांव का एक बिल्कुल लकड़हारा जो होता है, बिल्कुल नॉर्मल बंदा, कहता मैं 10 मिनट में ठीक कर दूंगा ये चीज राजा जी। राजा कहता तू ये कर और मैं तेरे को बड़ा पैसा दूंगा। वो 10 मिनट में वो चीज ठीक कर देता है और पक्षी बड़ा ऊपर उड़ जाता है। वो सोचो उसने ऐसा क्या करा होगा उस इंसान ने जो एक्सपर्ट नहीं कर पाए। आप जवाब दो सोच के, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जी।
0: आइडिया नहीं है मुझे।
1: उसने उस टहनी को काट दिया। तो हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं जॉब के अंदर, हमें पता है कि हमने सुबह ऑफिस पहुंचना है, हमारे मीटर डाउन है, सैलरी मिल रही है, पंच करना है, शाम को चले जाना है। तो मैंने अपने बॉस को यही कहानी सुनाई, मेरे बॉस की आंखों से आंसू आ गए थे और उन्होंने कहा यार मैंने तेरा ऐसा बंदा नहीं देखा कि जो 1 तारीख को जॉब छोड़ रहा है और ये कहानी सुनने के बाद। 31 तारीख को मैंने ये कहानी देखी थी, 1 तारीख को मैंने डिजाइन दिया और अपना काम करा, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में चला गया था, मैं कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहता था। और जब तक इंसान कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता उसको अपनी वैल्यू नहीं पता होती। तो मैंने जॉब छोड़ी, अपना काम करा, बड़ी दिक्कतें आई, बड़ी मीटिंग्स करी, क्योंकि जॉब में एक लिमिटेड से अच्छी सैलरी मिल रही थी। 2012 में मेरी शादी हुई तो मुझे ये था कि यार बड़ा मेरे ऊपर प्रेशर आ गया, बट करते करते करते करते भगवान अपने अवस्था बनाता है अगर आप मेहनत करते हैं तो।
0: और देखिए वैसे भी ना मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे तो यहाँ पर आना है, जब आपने अपने लिए खुद डिसाइड किया है और आपकी फैमिली आपके साथ साथ में साथ दे रही है, अब जो बच्चे हैं उनका भी तो कुछ ना कुछ अपना होगा ना, तो हम इसके माध्यम से लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि उनके भी अपने सपने होते हैं तो उन्हें भी अपनी लाइफ को जीने देना चाहिए। हाँ एजुकेशन जरूरी है, वो उनको बेसिक तो लेनी ही है, लेकिन उसके बाद उनका जहां पर मन है वो वहां जाएं और आप लोग सपोर्ट करें उसमें, थोड़ा गाइड कर सकते हैं।
1: एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि इंसान सब कुछ खुशी के लिए तो कर रहा है, कोई ज्यादा खा रहा है तो खुशी के लिए, कमा रहा है तो खुशी के लिए, अगर आप अपना सपना ही पूरा नहीं कर पाओगे तो मेरे को लगता है कि वर्थ इट नहीं रहा जीना, तो मुझे मेरा ये मानना है।
0: अब आपको लग रहा है इस अभी इस स्टेज पर आकर कि कुछ ऐसा रह गया जो अभी भी आप करना चाहते हैं?
1: मेरा यही सपना अभी भी चल रहा है कि मैं अगर मेरे सिखाए हुए से अगर 1000 बच्चा भी सीख के अपनी जिंदगी में सेट हो जाए तो मेरा ये एक एम है बस। मेरा और कोई मकसद नहीं है, काम चल रहा है, जिंदगी चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बट अगर कोई आज से मेरा कोर्स शुरू करता है जो डिजिटल मनीष वर्मा में डाल रहा हूँ और सीख के क्लाइंट उठा लेता है, पैसा कमा लेता है, अपना सपना पूरा कर लेता है और आज से 20 साल बाद भी कहेगा कि यार मनीष सर का मैंने कोर्स देखा था और आज मैं कहां से कहां पहुंच गया, मेरे लिए इससे बड़ा तो शायद मेरे को लगेगा कि जन्म लेना मेरा व्यर्थ नहीं गया।
0: चलिए मनीष जी, ऐसा है कि पैसा हर कोई तो, चलिए अभी जो बच्चे हैं उनके तो होता है सपना कि उनको पैसा कमाना है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो अब इस स्टेज पर हम आ गए हैं कि उतना मैटर नहीं करता है पैसा, है ना, तो मेरा भी है कि हाँ मैं अब जिस तरह से बातचीत चल रही है तो मुझे भी अब आ गया कि SEO पर मुझे मेरे तो दिमाग के ऊपर ऊपर से निकल जा रहा था कि
1: कुछ मुश्किल
0: क्या चीज है,
1: कुछ मुश्किल
0: तो मैं भी देखती हूँ शायद हो सकता हाँ। है मैं भी आपसे जुड़ूं और इस चीज को सीखूं सिर्फ एक नॉलेज गेन करने।
1: एक घंटे की वीडियो अगर आप आधा घंटा देखोगे और आधा घंटा प्रैक्टिस करोगे तो आप भी सीख सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है।
0: क्योंकि जिंदगी में हमेशा जैसे मैंने एक पोस्ट डाली थी कि निरंतरता जरूरी है, तो वो मतलब कुछ ना कुछ आप रोज सीखते रहिए, कुछ नया आप जरूर सीखिए,
1: बहुत जरूरी है
0: ना, बहुत जरूरी है। चलिए रैपिड फायर ले लेते हैं एक फटाफट से, थोड़े से क्वेश्चंस हैं। दिल्ली के छोले भटूरे या धर्मशाला के मोमो सिड्डू या फिर आपकी पसंद से जो भी?
1: मेरे को धर्मशाला के मोमो और सिड्डू अच्छे लगते हैं और स्पेशली कांगड़ी धाम।
0: ठीक है हाँ यस हाँ, मेरी क्वेश्चन गलत हो गया। पहाड़ों की तेज बारिश में ब्लॉगिंग करना या फिर कमरे में बैठ करके SEO की कोडिंग या फिर स्ट्रेटजी?
1: पहाड़ों की तेज बारिश और बादलों में मुझे काम करने में बहुत मजा आता है जी।
0: अब अगला डेस्टिनेशन जो वंडर बंजारा के दिल के बहुत करीब है लेकिन वहां पर अभी तक आप नहीं गए?
1: मैं शानगढ़ जाना चाहूंगा, सिसु के पास मनाली में शानगढ़ जगह है, वहां जाने का बड़ा मन है, अभी तक जा नहीं पाया हूं, वहां जाऊंगा।
0: राजगुंदा वगैरह देख लिया आपने?
1: हाँ जी हाँ जी, बड़ोत राजगुंदा मैंने देख लिया, बहुत सुंदर है।
0: थोड़ी सी उसकी ब्यूटिफिकेशन यहाँ भी कीजिए।
1: बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा सुंदर है राजगुंदा वैली, खासकर बीर से राजगुंदा की जो रोड है, लपास वॉटरफॉल और बरोट का जो रिवर साइड बैठ के चाय पीने का जो मजा है, गाने सुनने का, ओ और सबसे बड़ी बात वहाँ हमेशा ठंड रहती है, कभी भी गर्म होता नहीं मौसम, कंबल और रजाई हमेशा निकले रहते हैं, तो मजा अलग है।
0: तो मैंने इसलिए आपको कहा कि बताइए, क्योंकि हम ही लोग हैं जो कि हाँ। देखिए अब इतने साल ना हम देहरादून में रह के आए लेकिन पास ही में हरिद्वार था, कभी वहाँ नहीं विजिट कर पाए किसी भी वजह से, हमारे माता पिता की व्यस्तताएं वैसी थी, हम तो बच्चे थे छोटे। और अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते तो हैं जैसे कि हम निकले,
1: मुझे भी कहते हैं, मुझे कहते हैं यहाँ के लोकल्स की यार तू पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, हमने उन जगहों के नाम नहीं सुने, हमारा जन्म यहाँ हुआ है
0: हाँ।
1: तो निकलना चाहिए, घूमना चाहिए धर्मशाला में। इतनी देखो गूगल मैप पे जो जगहें दिखती हैं ज्योति जी वो अलग है, और जो सच में इतनी हिडन स्पॉट है यहाँ पे, मैं डाल रहा हूँ उनकी वीडियोस, आप जब वहां जाओगे तो आप कहोगे यार मतलब ये क्या जगह है। बाकी मैं चाहता हूँ कि जो मैं अपनी नजरों से देख पा रहा हूँ दुनिया भी वो चीजों को देख पाए, तो मुझे खुशी मिलती है कि इतना अच्छा आपने गांव दिखाया, इतने अच्छे लोग दिखाए, तो ये मेन चीज है बस।
0: तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं हाँ। ना जैसे कि यहाँ से हम फॉरेन कंट्री जाएं, वहां पर अपने जो देश का पैसा है वो वहां पर लगा के आए, तो भाई अपने ही यही रहने दीजिए, खास करके अपने अपने छोटे छोटे स्पॉट से शुरू करिए, फिर थोड़ा हिमाचल के बाहर भी निकलिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है,
1: बिल्कुल
0: है ना। हमारा मेन मकसद यही है कि पहले हम
1: बहुत कुछ है अपने देश में, कितना इतना अच्छा हिमाचल है, और अगर हम इसको सही तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करें और अपनी हर बंदा अपना योगदान दे, कोई रोड पे, कोई पहाड़ों पे, कोई किसी चीज पे, और आप समझे कि भाई हर बंदा समझे कि हिमाचल को साफ रखना है, जितने भी ये फ्लड वगैरह ये चीजें होती हैं जो जो पीछे भी नेपाल में भी देखने को मिला, कहीं ना कहीं इंसान की भी गलती है, हम बोतलें फेंक देते हैं, कोई कहीं कुछ फेंक देता है, वो कहीं ना कहीं जाके फंसता है, फिर वहां की मिट्टी जो है वो फिर दलदली हो जाती है, फिर फ्लड आता है, ये चीजें होती हैं। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, आपने यहाँ पे देखा होगा तपोवन में जो कोड का एक बोर्ड लगा हुआ है बड़ा अच्छा, उस पे लिखा है कि बोतल की उम्र 500 सालों से ऊपर होती है, मतलब हमारे पूर्वज भी 500 साल मतलब नहीं जी किसी की उम्र होती, अगर हम बोतल का डंप करते हैं तो वो 500 साल तक गलेगी, नहीं सोचो प्लास्टिक, तो इसलिए प्लास्टिक को सबसे पहले संभालना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा हार्म करता है पर्यावरण को।
0: तो ये सिर्फ ट्रैवलर ही नहीं है, आपको और भी बहुत मैसेजेस जो हैं वो अभी हमारे कार्यक्रम से भी दे रहे हैं और वैसे भी हमेशा देते ही रहते हैं। वंडर बंजारा जी, मनीष जी, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: मुझे, हमें ये भी बताया कि आपका जो समय है वो भी बहुत कीमती है,
1: फिर धन्यवाद,
0: फिर आपसे बात करें।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, धन्यवाद
0: दोस्तों। इस कार्यक्रम के पीछे यानी कि कैमरे के उस पार हमारा साथ दे रही थी शशि, और इसको एडिट करके आप तक पहुंचाया है रुचिका ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे संदीप परमार जी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और उसका नतीजा सामने है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय

0: जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
0: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश के लाखों युवाओं ने हाल ही में नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है और इसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक काम के लिए एक साथ आते हैं।
0: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत भविष्य में युद्ध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता विकसित कर रहा है ताकि आत्मनिर्भर और भविष्योन्मुखी रक्षा प्रणाली का निर्माण किया जा सके। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का प्रयास भी कर रहा है। जापान एशियाई खेलों में आज अंकुश ने मुक्केबाजी के 80 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। तीरंदाजी में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम और महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 सहित 30 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: पता नहीं, उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टिव, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस?
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
10: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
9: हाँ बोलो।
10: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
9: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
10: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
11: गजब बेइज्जती है।

श्रोतियो रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो 91.2 MHz ते पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो। तो मैं हां तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। तो मेरे नाल तुसी सुन रहे हो ये प्रोग्राम। तो आओ सुनते हैं प्रोग्राम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोतियों रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहने सोहने पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदां ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करदे रहो पंजाबी गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल तहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

यह रेडियो कुंजन धर्मशाला 91.2 MHz इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही और जीनियस?
5: यूर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के।
3: ना सही और जीनियस?
5: यूर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना ये, भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्रीराम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं, अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है, अपनी मर्यादा में। अगर कोई

0: मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा पर, जवाब देंगे।
1: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
2: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
3: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
2: हाँ बोलो।
3: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
2: अभी बताओ। टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
3: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
4: गजब बेइज्जती है।

तशुतों तो सारी इस वक्त जुड़ी है न अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला करने। पहले तो तुह सारे जो ही शशि का प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। कने इस कार्यक्रम का जिहड़ा सफर है से तुह तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। कने मौसम की जिहड़ा गल है से करिए तो कुथी न कुथी मौसम अपना जिहड़ा बदलाव है से जरूर लैंदा है। कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दिन माटी दी महक कार्यक्रम दी जिहड़ा शुरुआत है से यहाँ करी थी है अपनी गलबात करने। कने तो हाँ जिहड़ा ठंडी ठंडी हवाएं न तिना दा जिहड़ा नज़ारा है से भी जरूर लै दे होने न। कने जिहड़ा मिट्टी दी खुशबू है उसका भी इंजॉय जिहड़ा है सह लै दे होने न। कने सी कने अज गल करिए तो अज संडे है, संडे का दिन बेहतर इंजॉय वाला होंदा। कने तो हाँ जरूर इंजॉय भी करा दे होने न क्योंकि बच्चों की गल करिए तो कुथी ना कुथी बच्चे जिहड़ा न से अपना अजकना जिहड़ा दिन है से इंजॉय करते न। कने अपने जिहड़ा काम कार है तिना जो भी जरूर करते न। कने हाँ भी तुह तक पुजी हो न रविवार का ये दिन है। कने मौसम जिहड़ा है से बड़ा ही बेईमान भी बोली सकते, सुहाना भी बोली सकते क्योंकि मौसम जिहड़ा है से हर दिन कोई ना कोई अपने जिहड़ा मिजाज है से जरूर रखते न। कने जिहड़ा आहंदी देव भूमि है या रंग है आहंदी जिहड़ा लोक संस्कृति है से कुथी ना कुथी यहाँ जो एक ही दुए ने जोड़ी करी रख दी है। तो हाँ सारे भी जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम के सफ़र करने जुड़ना है, जुड़ने वास्ते जिहड़ा नंबर है से तुह तक पहुँचाई दे न क्योंकि नंबर तुह तक पुजेगा ताई तो तुह इस नंबर पर कॉल कर सकते या टेक्स मैसेज कर सकते या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते। नंबर है 7018117091। नंबर तुह तक पहुँचाई तो है। कने इसी कने हाँ अपने कार्यक्रम का जिहड़ा आगाज है से करी लैंदे न क्योंकि आगाज अगर एक गीत कन्नै होई है तो कार्यक्रम का जिहड़ा सफ़र है से और भी प्यारा लगता है। तो सफ़र जो प्यारा बनांदे न कन्नै एक गीत तुह तक पहुँचांदे न।

0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला शुरुआत करी थी हाँ इस गीत कन्ने कांगड़ी धमाका है। अमित अमितू की आवाज़ अलग अलग जिहड़ा मैशअप हाँ बोली सकते कि हर गीत के बोल जिहड़ा न से तो हाँ इस गीत च सुने होने न ता जिहड़ा पहले श्रोता ने से यहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं न कर दिन तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी बड़ी तो हाँ
0: जी, हाँ भी ठीक ठाक है जी। जी धर्मशाला ते रहने वाले विजय जी ना जी?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: जी तो विजय जी, आज कना जेड़ा दिन है सिख दिया की चले, आज तो हाँ वैसे छुट्टी की थी हो कि कमे पर ही?
1: नहीं मैडम जी, सोमवार होगी छुट्टी।
0: जी अच्छा, सोमवार जैसे छुट्टी सोमवार करते तो हाँ।
1: हाँ जी मैडम जी।
0: जी चलो अच्छी गल है जी, आज ऑन ड्यूटी पर हैं।
1: जी मैडम जी, छुट्टी जरूरी
0: है। जी जी, हर किसी का अपना अपना वीकली ऑफ होता ना जी।
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम
0: जी। चलो बच्चों की तो गल हाँ कर सकते कि तीना जो संडे जो छुट्टी होती ना जी।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी। तो विजय जी, आज यहाँ जेड़ा खास दिवस बना देना तिदे ऊपर भी अहां गलबात करनी है। आज अहां जेड़ा खास दिवस बना देना विश्व पर्यटन दिवस ना जी।
1: हां जी
0: जी ता हर दिन अहां वास्ते कितना खास होंदा है ना जी?
1: हां जी मैडम जी, दिन खास ही होंदा मैडम जी।
0: जी जी, क्योंकि घूमने फिरने दिया जेड़ा जगह न पर्यटन न कने धर्मशाला दी अगर अहां गल करिए तो तुहां जरूर थोड़ी देर धर्मशाला दी जेड़ा खूबसूरत वादियां न तुहां भी घूमे होने ना जी। तुहां तो वैसे भी धर्मशाला च ही काम करदे तो तुहां ज्यादा पता होना ना जी।
1: हां जी, हां जी, जियां मेट्रो ओदे गन चो गया सिटमुट वगैरह हो गया।
0: जी जी,
1: हां जी, हां जी, घूमने आंदी तरह।
0: जी जी, अगर मैकलोडगंज की गल करिए तो तुहां तिस जगह घूमियो कि नहीं घूमियो तुहां?
1: ना घूमी मैडम जी।
0: जी अच्छा घूमियो। त्रिउंड की गल करिए तो तिथु भी गयो तुहां?
1: नहीं मैं त्रिउंड गयो।
0: जी अच्छा, त्रिउंड जेड़ा से तुहां नहीं गयो? नड्डी, नड्डी की गल करिए तो नड्डी गयो तुहां?
1: नहीं मैडम जी, नड्डी भी।
0: जी दिखा हां, इतने करीब होई करी भी यहां घूमी नहीं पांदे ना जी। जी सही है ना कि अहां अपने जुबान पर ही रखे कि यहां टाइम ही नहीं है? अगर अहां टाइम जी टाइम जेड़ा है से निकालना जरूरी है ना जी।
1: हां जी भाई, ठीक बोले
0: जी, क्योंकि जालू भी यहां जो वीकली ऑफ होता है तो अहां कुथी ना कुथी अपने जेड़ा काम मन से सोचे होंगे ना जी कि अहां इस तरीके ना करने ना, या कोई दिन अहां ऐसा रखे होंगे कि अहां अपनी फैमिली कन्ने घूमना जाना है या कुछ भी करना है ना जी। क्योंकि जितना जरूरी अहां वास्ते काम है ना जी, उतना ही जरूरी अहां वास्ते अपनी फैमिली है, घूमना फिरना भी जरूरी है। क्योंकि जिंदगी दी अगर गल करिए तो जिंदगी दा जेड़ा कोई भरोसा नहीं है ना जी।
1: नहीं मैडम जी, कोई भरोसा नहीं।
0: जी जी, क्योंकि आज का जेड़ा दिन है सै यहाँ वास्ते खास है, पर हाँ कल पर निर्भर हो जाते हाँ, कल जो सोचना जेड़ा है सै शुरू हो जाते ना जी।
1: मैडम जी, जिन्हें छुट्टी होंगी ना घूमना तो चाहिए, कम करने का टाइम होता, काम भी करना चाहिए।
0: जी जरूर जी, मैं ये नहीं बोला दी कि तुम काम मत करा, काम करने दी जगह काम भी करना जरूरी है जी। जी जी, जी तो विजय जी, आज तुम कुंडिया गीत सुनना पसंद करके
1: आज सुनाई जा तो मैं मुंडू कांगड़े दा तू शिमले दी गोरी।
0: जी मैं मुंडू कांगड़े दा तू शिमले दी गोरी। जी जरूर, ए गीत ए फरमाइश तो तक पहुंचान दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
1: ठीक है मैडम जी।
0: जी तैशो तो दोहा सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां करने जुड़ सकते कने यहां करने गलबात जेड़े से जरूर करी सकते। आजकनी जेड़ा गलबात है से खास है, 27 सितंबर दी गलबात करिए तो आज यहां खास दिन जेड़े से बना देन तो हां सारे भी इस दिने जो जरूर जेड़ा सेलिब्रेट ऐसे करा दे होने ना। क्योंकि धर्मशाला दी गल करिए तो हाँ अपने आस पास जेड़े से घूमने फिरने दियाँ जेड़ा जगह न से बड़िया ही प्यारियाँ न, मौसम भी सुहावना है कने घूमना फिरना भी यहाँ वास्ते जरूरी है। कने अगले जेड़ा श्रोता है ना उसे जुड़ चुके हो ना कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
2: हेलो
0: हेलो, नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी। नमस्ते
0: जी। स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
2: बढ़िया जी, बढ़िया
0: जी। तुहां कुछ दे रहने आले ने, कने तुहां दा ना क्या है जी?
2: चैतड़ू ते बोला दे। हां
0: जी, चैतड़ू ते बोला दे मंगल जी।
2: हां जी
0: जी। ता मंगल जी, क्या हाल चाल है तुहां दे? क्या काम कार छेड़िया तुहां? क्या करा दे आज?
2: काम कार है
0: जी, कोई काम कार नहीं है?
2: नहीं है, मारी मोटी दे आड़ी दे वाले
0: जी। जी ता आज यहां
2: जागे जो बिर पर लगे
0: जी। जी श्राद्ध जिड़ा ने से शुरू हुई हो ना जी? काम तो सारे रुकी हो ना?
2: काम अंकुरी जी का नवरात्रे भी नहीं ठीक है
0: जी। जी अस्ते चैन ना जी?
2: हां जी। हां
0: जी। ता ठीक नहीं है नवरात्रे भी
2: जी?
0: नवरात्रे भी जिड़ा तो हम बोला दे कि ठीक नहीं है ना जी? अस्ते चैन जी। जी तो आज हाँ जेड़ा खास दिन बना देन से बना देन विश्व पर्यटन दिवस जी।
2: अच्छा,
0: तो तुहें यो सबसे प्यारी जगह कुन दे लगती जित तो तुहें मतलब ज्यादा? कई बार होंदा ना कि कोई जगह ऐसी होंदी कि आहे यो बड़ी ज्यादा खूबसूरत लगती है जगह।
2: हिमाचल ही होंगे तो बढ़िया
0: जी। हिमाचल ही है जी? हिमाचल च क्या खासियत जेड़ा ऐसे तुहें लगती?
2: हिमाचल से इन मतलब बर्फ बर्फ होंगी मंदिर मंदिर है
0: जी, धौलाधार दे पर्वत हर जगह शक्ति पीठ है ना जी। कांगड़े की गल करिए या ज्वाला जी की गल करिए या ज्वालामुखी की गल करिए या हिमानी चुमंडा की गल करिए या चुमंडा की गल करिए या बैजनाथ, मतलब हर जगह कोई ना कोई स्थान पर कोई ना कोई जिड़ा मंदिर है ना दी जिड़ा देव भूमि है से अहां जो कुथी ना कुथी अपने अपने करने जोड़ी के रख दी है ना, ये बड़ी बड़ी खासियत है ना जी हिमाचल दी।
2: हां जी
0: जी जी।
2: एक गल आई है कि जी यहां इतो दे बंदे पंजाब ही जांदे कर पंजाब दे इतो हुंदे
0: ने जी जी जी जी। ये तो बिल्कुल सही बोलया तो हां, क्योंकि इतो दा जिड़ा वातावरण है ना से बड़ा ही साफ सुथरा है ना जी। कई बार पानी की गल करिए पानी भी जो साफ नहीं मिलता है ना जी। जी बीमार हो जाते हैं कई बार तो हाँ।
2: हिमाचल मतलब अच्छा ही है
0: जी। बोड़ियां दी गल करिए तो बोड़ियां दी तो अलग ही खासियत है ना जी, पर तीना जो हाँ बिल्कुल भूली ही होने मुझे लगता
2: आजकल ये गल रहे
0: जी। कुथी कुथी है
2: नलके आई हो
0: जी? जी
2: आजकल तो बरसोई जी नलके लगी है साहब
0: जी। जी है
2: तो बाहर भी कर जाओ
0: जी, पर बोड़ियां दा पानी बड़ा ही, अगर गर्मियां दी गल करिए तो गर्मियां च से पानी बिल्कुल ठंडा होंदा ना जी।
2: हां जी, सर्दी च गर्म होंदा ना
0: जी। जी सर्दियां च गर्म होंदा, बड़ी बड़ी खासियत है ना जी।
2: हां
0: जी। ता मंगल जी, आज तुहां कुंदिया गीत सुनना है जी।
2: गीत सुनाई दे तुहां चिमटे दी छनकार
0: जी। चिमटे दी छनकार
2: बाबा जी ते चिमटे दी
0: जरूर तुहां जो छात लाइया दी सैर आहा करवानी है जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हंदा।
2: धन्यवाद
0: जी। तो शो तो वहाँ भी अपनी गलबात जो इतो ही रोक देना, कने तो हम जो ले करी चल देना फरमाइश दी ओर।

0: बीजे जी तक हाँ ये फरमाइश पहुँचाई कने तो हाँ सारे भी इंजॉय की थी कने इसी कने अगले जेड़ा श्रोता ने से हाँ कने जुड़ चुके हैं कर दें तीना कने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी, क्या हाल है ना?
0: जी हाल तो बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तो हाँ दसा तो हाँ ठीक है ना?
1: हाँ जी ठीक है जी।
0: जी पवना जी कांगड़े ते बोला थे ना जी।
1: हाँ जी
0: जी तो पवना जी क्या हाल चाल है कांगड़े वालों दे, क्या काम कार छेड़िया तो हाँ क्या करा दे?
1: बस जी बढ़िया चाल है, मौसम ठीक हो गया, वरना ज्यादा गर्मी नहीं है ज्यादा।
0: जी ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है।
1: हाँ जी
0: जी जी तो इस टाइम कदे है मौसम जी?
1: इस टाइम तो धूप रही है।
0: जी अच्छा धूप लगाई थी तो हाँ कांगड़ा है ना जी।
1: हाँ जी
0: जी जी तो पवना जी आज हाँ गल बात करा देना विश्व पर्यटन दिवस के बारे च गल बात करा देना। तो तुम्हें सबसे ज़्यादा जेड़ा खूबसूरत जगह है या कौन दे जगह तुम जो सबसे प्यारी लगती?
1: नहीं है भाई, अपना हिमाचल कह रहे हैं, अपन सब कहते हैं पटंगा ही है। हाँ
0: जी जी जी
1: जी
0: जी ता हिमाचल च तो हाँ सारी जगह घूमियो कि नहीं घूमियो?
1: यार, ते डिस्ट्रिक्ट घूमे हो, ते नहीं घूमे हो?
0: जी आते घूमी लियो कने अगर हाँ कांगड़े दी गाल करिए ता कांगड़े तो हाँ कुतु कुतु घूमे आयो?
1: कांगड़े तो मतलब सारा डिस्ट्रिक्ट घूमे ही है।
0: जी कने जेड़ा कांगड़े दा मंदिर है से तो तुहंदे घरे वखे ही होना मुझे लगा था।
1: हाँ जी
0: जी
1: क्या
0: जी जी चलो अच्छी गल है जी, क्योंकि घूमना फिरना भी यहाँ वास्ते ज़रूरी है ना जी।
1: है? हाँ जी
0: जी कने ठीक है घूमना फिरना भी ज़रूरी है पर इस कने एक काम और भी करना ज़रूरी है।
1: हाँ जी, कौन काम जी?
0: तो हाँ सोचा कि क्या काम करना ज़रूरी है?
1: क्या काम करना जरूरी है?
0: जी काम करना ही जरूरी है कि कई बार अहाँ घूमना फिरना जाते ना तो अहाँ कुथी ना कुथी कचरा भी तिथु फैलाए होते ना जी, सफाई का ध्यान
1: नहीं
0: रखना
1: नहीं
0: ही।
1: जी, कभी नहीं फैलाना चाहिए, बस अपना बैग लिया बहुत ही सिपाही बंदे।
0: जी तो सही काम जरूरी है ना जी, से ज्यादा जरूरी है।
1: हाँ जी, या तो बच्चे भी बोलते कि कचरा नहीं फेंक रहा हूँ, तुम जो खा रहे सब बैग के खा जा रहे हो, बच्चे चपांगे।
0: जी जी क्योंकि अगर हाँ खुद बच्चे जो दस के ताई तीनों सीखना ना जी।
1: हाँ जी सही है,
0: जी जी और नई ताजी
1: बस ही बढ़िया।
0: जी तो धर्मशाला भी घूमे तो हाँ कि नहीं घूमे
1: हाँ जी
0: धर्मशाला?
1: धर्मशाला सारी घूमी
0: जी अच्छा
1: थी,
0: घूमे तो अच्छी बात है।
1: बगलौटगंज भागसुनाग
0: जी
1: नड्डी सारे घूमे हो?
0: जी अच्छा भागसुनाग भी घूमे तो हाँ नड्डी भी घूमे हो।
1: हाँ जी
0: जी चलो घूमना फिरना भी बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी कने प्रकृति है प्रकृति हाँ जो हमेशा ये बोल दी है कि तो हाँ मेरा ख्याल रख गए ता ताई मैं तो हुंदा ख्याल रखना है ना जी। जिना माँ अपने बच्चे जो बोल दी है कि माँ तो हमेशा अपने बच्चे दा ख्याल रख दी है ना जी। कने
1: हाँ
0: जिन्हें
1: जी,
0: ही
1: पर बच्चे
0: बच्चा
1: बताए थे ना मारे का ख्याल
0: जी जी तीन यहाँ दी जड़ा धरती माता है से यहाँ जो यही बोलती है कि मेरा ख्याल भी तुम अच्छे तरीके ने रखा ना जी।
1: रखना। हाँ जी हाँ जी, लोग घूमना जानते तो अपना घर कच्चा टैंक दे सारे पास, अच्छी
0: जी
1: अच्छी
0: जी
1: गल नहीं है ना। हाँ
0: जी जी बिल्कुल अच्छी नहीं है ना जी है।
1: जी
0: जी तो पवना जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनने है कुंदे फरमाइश है तुम दी आज।
1: आज क्यों सुनाई दे, जिंदगी सोनी है घूमते।
0: जी जी अच्छा जिंदगी सोहनी है आज तो हाँ।

0: सुनना है ना जी
1: जी
0: जी जिंदगी तो सोनी है, पर जिंदगी दे सफर जो तुह सोना भी बना देना कि नहीं बना देना कि कम्मे ची बिजी रहन देना
1: नहीं जी, यहाँ तो बड़ा एंजॉय कर दे लाइफ
0: जी। चलो अच्छी गल है, ता बड़ी अच्छी गल है जी
1: जी
0: जी जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा दे जी। चुनने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा
1: धन्यवाद जी।
0: जी। तशु तो तुह सारे जो ही लेकर चल देना अगली फरमाइश की ओर, ये भजन तुह तक पहुंचा देना, तुह सारे भी इंजॉय करा।

हाँ बोला दीन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहां सारे सुनिया ये भजन। इस भजन दी फरमाइश जहाँ तक पहुँची हो वह चैतड़ुए ते कने तिना दा ना वे मंगल जी तो जरूर तिना तक अहाँ ये फरमाइश ये भजन पहुँचाया कने तुहां सारे भी इंजॉय किया कने इसी ते बाद अहाँ फिर ते अपनी गलबात पर चली पौंदे न क्योंकि गलबात पर जाना भी जरूरी है कने समय दी ओर अगर हाँ अपनी जेड़ा नज़र है से लगांदे न तो समय 2:29 कार्यक्रम जो ही है कने तो हाँ सारे भी समय दे अनुसार इस कार्यक्रम दे सफ़र कने जुड़ी होने न क्योंकि समय जेड़ा है से अहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। कने अज अहां अज कने दिने जो खास तौर पर बना दे गल करिए विश्व पर्यटन दिवस की तो जरूर जिहड़ा पर्यटन हैं जिहड़ा खूबसूरत जिहड़ा जगह है न तिना दी गल करिए कुथी ना कुथी श्रोता भी जिहड़ा न से अपनी जिहड़ा खूबसूरत जगह है न से दसियां कि अहां भी सारी जगह जिहड़ा न से घूमे हो न कने धर्मशाला दी गल करिए धर्मशाला च भी बड़ियां सारियां जिहड़ा खूबसूरत जगह है न कने हर कुसी जो घूमने फिरने दा जिहड़ा शौक है से जरूर होंदा कने घूमना फिरना भी अहां वास्ते जरूरी है क्योंकि कई बार होंदा ना कि फैमिली जो समय देना है तो अहां अपनी फैमिली कने घूमना फिरना जाई सकते या अपने दोस्तों कने समय बिताना है तो तिना जो भी अहां समय जेड़ा है से दे सकते घूमना फिरना कई बार अहां दी सेहत वास्ते भी जरूरी होंदा अगर अहां तनाव चन या अहां टेंशन चन तभी अहां थोड़ा बेटर फील जेड़ा है से करी पाते न दशो तो इसी कने अहां फिरी ते अपनी जेड़ा गल बात है ते जो इत्थे रोकना है कने अगली जेड़ा फरमाइश है से अहां तक पहुंची होवे व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना तक अहां ये फरमाइश पहुँचा देना।

0: जरा सोच है सरख देना कन्ने इसी कन्ने अगर अहां अपने जेड़ा नदी नाले न तिना दी गल करिए ता सभी अहां जो कुछ न कुछ सिखा देन सभी अपनी रफ्तार लेकर चलन नदियां जो वहां दिखते न ता सभी अपनी रफ्तार लेकर चलिया न कन्ने अहां भी अपनी रफ्तार लेकर चलियो न कन्ने अगले जेड़ा श्रोता न से अहां कन्ने जुड़ चुके न कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हां जी ठीक ठाक है तुहांदा
0: जी। यहां भी ठीक ठाक है जी। क्या काम कार तुहांदा लगे या क्या करा दी?
1: हां क्या करना, मैं रोटी खा दी मैं करियो मैं प्रोग्राम में सुना दी जी। मामे फरमाइश दे लग दी मैं मैडम
0: जी। अच्छा तो हां भी सोचे कि फरमाइश दे ही लें देन जी। अपना नाम भी जरूर दसी दिया जी।
1: माया बोला दे सुकड़े ते
0: जी। माया जी सुकड़े ते बोला दे
1: जी।
0: ता माया जी कदिया लगदा तो हुं जो अपना गांव या शहर दी गल करिए ता कदिया लगदा तो हुं जो जी अच्छा ही लगदा जी। चलो अपना गांव तो हर कुसी जो अच्छा ही लगता ना जी। पर गांव दी तरफ ते हां कुथी ना कुथी शहरां दी ओर जेड़े से जा दे ना जी। जी ता गांव दी तो अपनी ही खासियत है। मिट्टी दे बर्तन चूल्हे दी अहां गल करिए ता तिस दी भी अपनी खासियत है ना जी।
1: जी
0: अपनी अपनी खासियत है। माया जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना है जी।
1: चंदिया मैं रोन भी उठना भी बना
0: जी। कुंदिया
1: चंदिया ने रोन भी लगाई।
0: चंदिया ने रोन झुन लगाई।
1: हाँ जी
0: जी। चंदिया ने तो हर जगह रोन झुन लगाई है।
1: रोन झुन लग दी
0: जी जी है जी जी।
1: अच्छी लग दी ना
0: जी। सच्ची लग दी तो हाँ नैना देवी जिड़ा बिलासपुर च है ना जी।
1: हाँ जी।
0: तो हाँ न्यूज सुनी होनी है से एक बच्चा है तिदी मतलब अखी दी जिड़ा रोशनी थी ना सैनी थी।
1: अच्छा।
0: तिस मंदिर जाई करी से रोशनी जिड़े से वापिस आई हो दिखा ये झंडे दी रौनक है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अगर हाँ कोई भी पूजा पाठ कर देना पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए ना जी।
1: जी
0: जी तो जरूर तोहंदी जेड़ा फरमाइश है से तोह तक पहुंचान दें जी। जुड़ने वास्ते
1: धन्यवाद जी। पहला
0: जी तोहंदा भी तशो तो वहां भी थोड़ा दिया कार्यक्रम दे सफर जो जरूर आगे बढ़ाना है पर अगले जेड़ा श्रोता न से जुड़ चुके हैं ना कर दें तिना करने गल बात। हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी। नमस्ते
0: जी। स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
2: हां जी ठीक ठाक बढ़िया
0: जी। तुहां कुत्थों दे रहने वाले न कने तुहांदा
2: नाम? और मैडम जी तुहां ठीक है न?
0: जी हां ठीक है जी। अपना परिचय जरूर दे दिया जी।
2: आहां कनेडा ते बोलना दे
0: जी। कनेडा ते नाम भी जरूर दसी दिया
2: ना है मेरा नु
0: अनु जी। बड़े दिन बाद तो रेडियो गुंजन धर्मशाला जो याद
2: हां जी हां जी
0: जी। तो कुछ गायब हो गए थे तो हां
2: हां तो कुछ नहीं गया है गायब मर घर है ना
0: जी जी। अच्छा घर ही है।
2: हां जी हां जी
0: जी। ना रेडियो सुनते थे कि नहीं सुनते थे?
2: ना रेडियो तो मैं डेली सुनती
0: जी। अच्छा डेली सुनते।
2: हां जी फोन मेरा खराब हो गया था उसके कारण करके मैं फोन नहीं किया
0: जी। अच्छा कारण था फोन खराब हो गया था तो हुंदा?
2: हाँ जी हाँ जी
0: जी। उन ठीक हुई है फोन?
2: हाँ जी ठीक हुई है
0: जी। चलो अच्छी गल है ना जी। क्या काम कार छेड़िया तो हाँ क्या करा दे?
2: बस क्या काम कार छेड़ना
0: जी। तो
2: बैठी हो? हाँ जी
0: जी। तो आज तो हाँ कुंडिया गीत सुनना है अपनी पसंद च।
2: मैडम जी गाना सुनाई दे तो हाँ मितुए दा।
0: मितुए दा कुंडिया गाना सुनना जी तो हाँ?
2: कोई भी सुनाई दे।
0: कोई भी
2: जरूर
0: जी। तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
2: ठीक है।

तशु तो वहां भी तो तक के की ते फरमाइश पहुंचा देना, तो सारे भी इंतजार जेड़ा है इस

तशो तो तस्वीर खिंचिया करो यादा बन रह जा तो जरूर तो सारे भी जल घूमना फिरना जानते हैं तो कुछ ना कुछ तस्वीर भी खिंचते न कने पूरी अगर मंदिर जो जाते हैं तो पूरी श्रद्धा भाव कने जाते हैं। तो इसी कने अहाँ भी थोड़ा जहा अपने कार्यक्रम के सफर जो अगे बढ़ाना है क्योंकि समय जड़ा से धीरे धीरे अपनी रफ्तार लेकर चलिया है तो अहाँ भी समय की रफ्तार कने चलना है कने फरमाइशा का जरा दौर है से तुह तक पहुँचाना है। तशो तो ये भजन लमिया डोरा ला मेरे बाबा इस भजन की फरमाइश अहाँ तक पहुँची हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना का नाम है प्रकाश जी कने से रहने वाले न सुके वाके ते तो जरूर तिना तक

रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कने अपनी गलबात ऊपर कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जो जरूर इंजॉय करा देना कने इसी कने हाँ सफर जो फिरी ते आगे बढ़ाना है कने ये फरमाइश हाँ पहुँचानी है

तो सारे ये भजन इंजॉय कीता कने इसी कने अहां फिरी ते थोड़ा दे आगे बढ़ते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना।

प्रश्न तो तुम सारे ही सुनिया है कि ते फरमाइश कने तुम सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम का जोड़ा समय है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक, तो जरूर इस गाने

श्रोताओं तो सारे अपनी रेडियो तो शशि जो दिया अनुमति क्योंकि कार्यक्रम का जेड़ा समय है सैथ ही संपन्न होंगे तैसी करने तो सारी अपनी रेडियो तो शशि जो दिया अनुमति कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: जो उसे टीबी है।
5: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना से यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस?
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना ये, भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। ये होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा पर, जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
7: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
9: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
7: हाँ बोलो।
9: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
7: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
9: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
3: गजब बेइज्जती है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

को नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

सो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द की ने घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
6: पता है ना मुझे टीबी है।
5: चल तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
0: यूर अ जीनियस?
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
5: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
6: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्रीराम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं, अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर थे रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा और श्रोताओं हम तो सो गीत अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर क्या हालचाल न तुंदे और क्या हालचाल न तुंदे ग्रां रे उम्मीद करना तो है भी ठीक और ग्रां भी बिल्कुल ठीक बुना श्रोताओं कार्यक्रम लेकर हाजिर पहुंचेगा इंदी अपनी गप्पा तो कार्यक्रम में श्रोतों आज गलबात करने असु कमल नहरी अरे बारे और यारे गीत असु इस कार्यक्रम में हुनने तैयार श्रोतों कार्यक्रम रा आगाज कर देने कमल नहरी अरे इस गीता होगी बड़ा खूबसूरत गीता लोबिया कमल नहरी इस गीता अंदर बल्लू देन श्रोतों चंदने लगी हो सारी रात वो लोबिया गेरी फेरी पलंगा लाए हो हथे दिया घड़िया मत खोल दो बैरी लोग टाइम दिता ओ वैरिया तो टाइम हिंदा भी बचूगा कार्यक्रम रा आगाज करने रहा इस गीता होगे आइया इस कार्यक्रम रा आगाज कर देन शो

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और एक कार्यक्रम इस समय चल रहा हिंदी अपनी गप्पा। एक कार्यक्रम सचिन कपूर सो की तो है बिल्कुल हुनु कर देने समय अपने अपने रेडियो सेट में श्रोतो अया कार्यक्रम जो हगो बढ़न देन और अगला गीत हुन देन कमल नहरी रा लाडलिए तो केवल लुंदन कमल नहरी है इस गीत अंदर लाडलिए गीत अंदर आइए श्रोतो हुन देन है सब भी कि लगूंगी फराटी और केवल देन इंदे अपने कमल नहरी जी हुन देन ये गीत

91.2 मेगाहर्ट्ज पे रेडियो गुंजन धर्मशाला 2 सभ्य ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इस वक्त। हाँ जी बिल्कुल, हिंदी अपनी गप्पा चल रही ना। कार्यक्रम होने कर दें सचिन कपूर सो के बिल्कुल और लाइव और श्रोताओं कार्यक्रम अंदर आज कमल नहरी रे गीत है सब होनू कर देन। अगले गीत तेरी और बढ़ देन और अगला गीत है श्रोताओं सही जाया नंदराल हुआ। तो बल देन कमल नहरी जी इस गीता सही जाया नंदराल हुआ वो तो जो बांस रहने दें दे हो तो जने बांस लेंदे सराने अंदर श्रोताओं तो निंदर तापू बड़ी छैल पेंदे है ना। कही कमल नहरी जी कि छुंदे बांस रहने सुन देन है सब भी।

इक्यानवे दशमलव 2 MHz पर थी रेडियो गुंजना और बड़े प्यारे प्यारे गीत के ना सुकमल नहरी जी है इन दी कम्युनिटी ऑफ दितुरे शोतो और हर बार कोशिश कर देन कि अपनी कम्युनिटी होगी लगाव रखन जुड़ाव रखन और इस तरीके रे और प्यारे प्यारे गीत के ना सो अपनी गद्दी कम्युनिटी जो दीन। बरहाल कार्यक्रम सचिन कपूर सो की हुनु कर देन तो है और चलिए श्रोतो अब अगला गीत हूं दिन मेरा बड़ा पसंदीदा गीत है डिस्को मेरे गद्दिया बड़ा प्यारा गीत है श्रोतो कमल नहरी री आवाज में गीत सु जरूर हुना कमल नहरी बोलूं देने इस गीता की डिस्को मेरे गद्दिया दणके सुधारा छड़ीता है ना मेरे मेरे बिजली भी लगिया अंबर भी गरजो और क्या क्या बोलूं देने कमल नहरी जी कड़ी कड़ी क्या क्या गरजो सो हूं लेन देन श्रोतो है सब तो है बनी रहा 91.2 MHz पुठी रेडियो गुंजन धर्मशाला सोगी गूंज अपने बन रही।

बड़ा मजा छुंदा आनंदित छुंदा इस कार्यक्रम होने रहा क्योंकि गीत चल रहे ना ऐसे कमल नहरी है दर्शकों तो सब सचिन कपूर सो की बन रहे ना और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा इस वक्त चल रहा तुम दे सब भी वे वीडियो सेट मा तुम दे सब भी ऐप मा तो यह कार्यक्रम जो और हगो बढ़न देन और अगला गीत कमल नहरी है जीरा होने देना संसारो बिल्लू पैसे थिए ओ संसारो पैसे थिए मिये दोस्ते लोरे थे सो दिन कैसे थिए तो जने दोस्ते लगे गंदे श्रोता हूँ तो सो दिन कैसे बुंदा है सो सो सब भी पता है ना दोस्ते और दिल लगे ये चीज ही अनोखिया ये लगेगा अच्छा ता भी बेड़ा पारा ना लगा ता भी बेड़ा पारा तो और क्या बोलूं देने कमल नहरिया जी कि बीणीपुर नचे वो संसारो बीणीपुर नचे तैया कमल नहरिया जी नचाऊ देने असु सब भी श्रोता भी इन नचू कर देने आइए श्रोता हूँ आगे फराटी और लाई लेंदे ने इस गीता बुठे

91.2 MHz पर टी रेडियो गुंजन धर्मशाला और आऊँ हाँ तुम अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर। श्रोताओं कार्यक्रम जो आगे बढ़ंदन और अगला गीत होंदन टिक टिक टोकेरा रिवाजो सनी आ रहा टोके दा रिवाज बड़ा आया हो नरी साहब टोके रे रिवाज बाकी आ और नरी साहब सबनी वे टोके दे तुहे भी घड़ी दिंदन ते मुंजो छोरू पति आंदा हो ता चिट्टी चादर बछाने थल्ले हो ढकना के लाना हो तो ढकने की जरूरत नहीं नहरी साहब कार्यक्रम में माहौल ही तूना गर्मो गर्म के ढकने की क्या जरूरत पैनी आइए श्रोताओं आका फराटी और सही नहरी साहब अरे इस गाने पुट्ठी

91.2 मेगाहर्ट्ज पुटी रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं कार्यक्रम में इस वक्त चल रहा हिंदी अपनी गप्पा आनंदित छुगर्दन बुना तो सुसभ्यो भी कार्यक्रम होने रहा क्योंकि कार्यक्रम में शो तो मजा इतना ज्यादा है छुगर्दन क्योंकि बंडरो भी तो है सचिन कपूर सो की ना ता और नरी सब बेहतरीन बेहतरीन गीत है सब हूं करदन शो तो नरी सब शूटिंग रे दौरान किया सो काफी हद तक करखा न करखा दिक्कत भी इंदी ने सो भी सामना करना पेंदी ने यूट्यूब में कह रहे गीत असू खरे तो लगते हैं बड्डी पिक्चर अंदर असू गीत खरे लगते हैं नचते खरे लगते हैं लेकिन इंदी पिठी पुछू और इंजो तूना स्ट्रगल करना पैंता शो तो जाए सो डांसर चाहे सो सिंगर बोआ चाहे सो कैमरामैन बोआ चाहे सो मॉडल बोआ चाहे जो मर्जी बोआ है ना जितना भी यारी फैमिली यारा परिवार बंदा सब भी हो गया सो काफी दिक्कत आ रहा सामना कदी कदी के यार सो करना पैंता और कदी कदी तो इजीली निकल जाता कि शूटिंग है यार दोता शूट कर लेंदे है ना लेकिन कणखे बंदा शो तो उन्नी की बच गए है ना तइये शो तो कार्यक्रम में होंगे ना वह अगला गीत सृष्टि री रचना हेरे वो दे भी है हेरे वो मंगला दुए वो जमे दुए गोदा पाना पर त्रीया वो कलंक कर पाना वो त्रिया कलंक कर पाना आइया हुन देने ए प्यारा दिया गीत

शोधो मजा चलिया इस गीता हुनेरा बड़ा आनंद आ हुना तुसु सभी होवे बुचिगो टाइम बुचिगो समय क्या करिए दिल न बंदा तुसु छड़नेरा पर शोधो मुंजो भी घरो गाना पैना ना ते लन्नो तुसु सभी हूं इजाजत शोधो बस गंदे गंदे बलना चाहनो हंस दे रे मुस्कुरन दे रे और मां बाप री इज्जत कर दे रे अपने भारत जो अपनी पंचायत जो अपने डिस्ट्रिक्ट जो अपने धर्मशाला जो साफ सुथरा रखने री कोशिश जरूर करा। जय हिंद जय धर्मशाला।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हिमाचल प्रदेश में नमस्ते योजना के तहत स्वच्छता कर्मचारियों के बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू। CBSE से संबद्ध स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए CTET को मान्य योग्यता माना गया। हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश। शिमला मतौर फोरलैन अलाइनमेंट मामले में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका की बंद। दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा। खराब सोलर स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम। पंचायत स्तर पर लगाई गई लाइटों की मरम्मत पंचायतें करेंगी। जल शक्ति विभाग के 393 आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में नमस्ते योजना के तहत सत्यापित फीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों के बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी माध्यमिक तथा उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नमस्ते योजना के तहत स्वच्छता कर्मियों का आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों के बच्चों को शिक्षा से जुड़ी सहायता उपलब्ध करवाना है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करीब 90,000 फीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मियों तथा 2.5 लाख से अधिक कचरा बीनने वालों का सत्यापन किया गया है। योजना का दायरा अब ग्रामीण क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ड्रेन कर्मियों तथा FTP और FFTP कर्मियों को भी योजना के दायरे में शामिल किया जा रहा है। हिमाचल के उच्च शिक्षा विभाग ने 26 सितंबर को स्कूलों को पत्र जारी कर संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। पात्र विद्यार्थी यदि अभी तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं तो उन्हें आवेदन के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने CBSE से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने कहा है कि ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET वैध योग्यता है। केवल हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी HPTET का प्रमाण पत्र नहीं होने के आधार पर किसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को रद्द नहीं किया जा सकता। ये मामला शिक्षक समाज शास्त्र के पद के लिए आवेदन करने वाले एक अभ्यर्थी की याचिका से जुड़ा था। याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को इस आधार पर खारिज किया गया था कि कट ऑफ तारीख से पहले उनके पास HPTET प्रमाण पत्र नहीं था। मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस शिक्षक भर्ती के लिए CTET को वैध योग्यता के रूप में मान्यता दी गई है। अदालत के समक्ष शिक्षा विभाग की ओर से लिखित निर्देश भी पेश किए गए। विभाग ने स्वीकार किया कि चूंकि CBSE अपने संबद्ध स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए CTET को मान्य मानता है, इसलिए केवल HPTET न होने के आधार पर उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला मटौर फोरलेन अलाइनमेंट मामले में स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका को बंद कर दिया है। मामला शिमला से नौनी चौक के बीच फोरलेन के अलाइनमेंट में हुए बदलाव से संबंधित था। हाईकोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों द्वारा विचार विमर्श के बाद लिए गए नीतिगत फैसलों में न्यायिक समीक्षा के तहत हस्तक्षेप की गुंजाइश सीमित है। अदालत ने ये मामला अक्टूबर 2024 में स्वतः संज्ञान में लिया था। इसमें अलाइनमेंट बदलने को लेकर सवाल उठाए गए थे। NHAI ने अदालत में बताया कि शिमला से नौनी चौक वाले हिस्से को 2 पैकेजों में बांटा गया है। NHAI के अनुसार नई अलाइनमेंट को उच्च स्तरीय बैठकों के बाद मंजूरी दी गई थी। NHAI ने यह भी कहा कि नई अलाइनमेंट से सड़क की ज्यामिति बेहतर होगी, पेड़ों की कटाई कम होगी और लोगों के विस्थापन तथा संपत्तियों के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा शिमला शहर में यातायात दबाव कम करने का भी दावा किया गया है।
मंडी जिले के बलह क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी कर्मचारियों को दीपावली से पहले महंगाई भत्ता यानी डीए देने की घोषणा की है। हालांकि डीए कितने प्रतिशत की दर से दिया जाएगा इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से जुड़ी अपना परिवार सुखी परिवार योजना में भी बदलाव की घोषणा की। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए मनरेगा में एक दिन काम करने की शर्त हटाई जाएगी। साथ ही पात्रता के लिए परिवार की आय सीमा को बढ़ाकर 75,000 रुपये किए जाने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कर्मचारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना और पुलिस विभाग में भर्ती से जुड़े विषयों का भी उल्लेख किया। उन्होंने जल्द ही पुलिस कांस्टेबलों के 800 पदों पर भर्ती किए जाने की बात कही। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खराब पड़ी सोलर स्ट्रीट लाइटों को लेकर शिकायतों के बीच संबंधित विभाग ने इन्हें ठीक करने के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब पड़ी है। स्थानीय लोगों द्वारा शिकायतें किए जाने के बाद इन्हें ठीक करने का अभियान शुरू किया गया है। हिम ऊर्जा विभाग की ओर से संबंधित एजेंसियों और कंपनियों को खराब लाइटों की मरम्मत निर्धारित समय के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पंचायतों के स्तर पर लगाई गई सोलर स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत की जिम्मेदारी संबंधित पंचायतों की होगी। शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब सोलर लाइटों की जानकारी संबंधित विभाग तक पहुंचाए ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कई स्थानों पर नई लाइटें लगाने के बावजूद उनके खराब होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। विभाग का कहना है कि शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में सेवाएं दे रहे 393 आउटसोर्स तकनीकी कर्मचारियों के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जानकारी के अनुसार इन कर्मचारियों का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक बढ़ाया गया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार इन कर्मचारियों में तकनीकी सहायता कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य तकनीकी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि आदेश में कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। कर्मचारियों का विस्तार 30 सितंबर 2027 तक या विभाग को उनकी वास्तविक आवश्यकता रहने तक जो भी पहले हो मान्य रहेगा। यदि इन पदों के विरुद्ध नियमित व्यवस्था हो जाती है तो आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो सकती हैं। यह सेवा विस्तार उच्च न्यायालय में लंबित एक मामले और वित्त विभाग के नियमों के अधीन भी बताया गया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके लिए अलग से अतिरिक्त बजट की मांग नहीं की जाएगी और मौजूदा योजनाओं तथा परियोजनाओं के बजट से ही खर्च वहन किया जाएगा। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।

आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। आपकी रेडियो दोस्त सुषमा हाजिर हो चुकी है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

आप सभी जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं चले फिर आगे बढ़े एक और तराने के साथ।

आज के इस कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, गीतों के इस सफर को यूं ही जारी रखते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

आप सभी जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं चलें फिर आगे बढ़ें एक और तराने के साथ।

आज के इस कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, गीतों के इस सफर को यूं ही जारी रखते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्पदंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्पदंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्पदंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: पता नहीं, उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दे।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना से यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस?
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना ये, भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। ये होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा पर, जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
7: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
9: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
7: हाँ बोलो।
9: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
7: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
9: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
5: गजब बेइज्जती है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और शाम के 6 बज गए हैं। श्रोताओं, ये समय रहता है आपके अपने कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का। आज का ये कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर आई है आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुनने वाले सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और साथ ही सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ श्रोताओं, आप सभी ठीक ठाक होंगे और आज संडे का दिन आप सभी ने बहुत इन्जॉय किया होगा। बहुत सारे काम ऐसे जो आपने सोच के रखे थे वो भी आपने किए होंगे और शाम जो है वो अब आ गई है, यानी कि कहीं ना कहीं दिल में एक धड़कन तेज़ हो गई है क्योंकि सुबह उठते ही मंडे है और मंडे को हम सभी तैयार हो जाते हैं अपने अपने काम के लिए। एक रिलैक्सिंग जो टाइम है वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म होने पर आ गया है। लेकिन श्रोताओं, कोई भी काम हो, कोई भी दिन हो, उसे इंजॉय करना चाहिए। काम हो तो काम को भी इंजॉय कीजिए और सच में आपके लिए हर दिन संडे बन जाएगा। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका समय रहता है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी इस कार्यक्रम को रोज़ाना सुनते हैं और साथ ही श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप सुन भी रहे हैं और अपने फेसबुक पेज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के पेज से हमें लाइव देख भी रहे हैं। तो आप सभी का जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला की शुरुआत करते हैं एक विचार के साथ श्रोताओं, और विचार यही कहता है, मुस्कुराता वही है जिसे पता है इस दुनिया में कोई भी समस्या रोने से हल नहीं होती। बिल्कुल, अगर रोने से हर समस्या संभल जाए या उसका हल मिल जाए तो शायद दुनिया रोती ही रहे, लेकिन रोने से नहीं, खुश होकर हर समय को हमें किस तरह से उस समय से निकलना है ये हमें आना चाहिए, यही है आज का विचार। साथ ही श्रोताओं, थोड़ी सी बात करेंगे कि मौसम को लेकर, और धर्मशाला की मैं बात करूं तो शाम के 5 बजे से इस समय तक इतनी तेज़ बारिश लगी हुई है कि कहाँ नहीं जा सकता, पैदल आप नहीं चल सकते हैं और दो पहिया वाहन वालों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। खैर, आज स्टूडियो की तरफ आते आते मैं भीग गई, लेकिन श्रोताओं कहते हैं ना कि ड्यूटी ड्यूटी होती है, काम काम होता है, समय की हमें कदर करनी चाहिए चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसा भी समय हो, लेकिन जहां हमें समय पर पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए हमें ऐसे आंधी तूफानों का सामना करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में भी ऐसे आंधी तूफान आते रहते हैं और अगर हम रुक गए तो हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर मैं भी रुक जाती तो यहाँ नहीं पहुंच पाती, लेकिन खैर पहुंच गए हैं और मौसम ने जो भी है अपना साथ पूरा दिया और अब यही कहेंगे कि धीरे धीरे ये मौसम जो है वो शांत हो जाए और 8 बजे तक जब वापसी का समय हो उस समय तक मौसम ठीक हो जाए। खैर श्रोताओं, मौसम अच्छा है और आप लोग घर पर बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, चाय की चुस्की भी आप इस समय लगा रहे होंगे क्योंकि ऐसे मौसम में कहीं ना कहीं मन करता है चाय पी ली जाए। अगर आपने चाय नहीं पी है तो चाय को ज़रूर पिए और ज़रूर चाय के साथ एंजॉय कीजिए कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला को। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम को अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ। तो भाई, ये गीत आप सभी के लिए है। क्यों आप सभी के लिए है? क्योंकि ये आपको बुला रहा है। तो चलिए लेते हैं इस गीत को और देखते हैं कि कैसे बुला रहा है आपको। मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत है श्रोताओं, जो आप अब सुनने जा रहे हैं और लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में है। इस गीत को एंजॉय कीजिए और फिर लौट कर आइए इस कार्यक्रम में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला पर आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और कार्यक्रम की शुरुआत हमने की इस प्यारे से गीत के साथ, और आप सभी को हमने यही कहा है, आजा शाम होने आई। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके होंगे, और जो नहीं जुड़े हैं, दूर से कहीं से उन्हें हमारी आवाज़ आ रही है, तो उन्हें भी हम यही कहेंगे कि जल्दी से रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपने काम भी कीजिए और साथ ही इंजॉय कीजिए इस कार्यक्रम को। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं, और आज एक ख़ास दिन हम सभी ने मनाया, मना भी रहे हैं, उस पर ज़रूर बात करेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे श्रोता जो हैं वो हमारे सुबह के कार्यक्रम को ना सुन पाए हों, गुड मॉर्निंग धर्मशाला को, जिसमें भी इस दिन के बारे में बात की गई थी। तो जो नहीं जुड़ पाए थे वो इस समय हमारे साथ ज़रूर जुड़े हुए हैं, और उन्हें हम बता दें कि आज हम सभी ने डॉटर्स डे भी मनाया, यानी कि अपनी बेटी को ही नहीं बल्कि आज के दिन हमें खुद को भी सलाम करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे श्रोता जितने भी हैं, बेटियाँ, किसी की बहनें हैं या किसी की घर की बहुएँ हैं, उन सभी को आज के इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, डॉटर्स डे बेटियों का दिन होता है, बेटियों को शुभकामनाएं देने का दिन होता है और उन्हें गले लगाने का दिन होता है। खैर, बेटियों को तो जितना प्यार दिया जाए वो कम है, और बेटियों का अपना ही एक जगह है, अपनी ही ज़िंदगी में उनका एक ओहदा है, और बेटियों के बिना घर तो क्या संसार भी सूना लगता है। लेकिन श्रोताओं, आज डॉटर्स डे पर हम कुछ हट कर बात करेंगे, और आज हम बेटी सिर्फ अपने आज हर बेटी सिर्फ अपने माता पिता से मिली शुभकामनाओं को स्वीकार ना करे, बल्कि खुद को भी एक बार दिल से बधाई दे। हाँ, खुद को, क्योंकि बेटी होना सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये ज़िंदगी के अलग अलग किरदारों को निभाते हुए आगे बढ़ने का नाम भी है। जो बेटी अपने सपनों के लिए मेहनत कर रही है उसे भी सलाम। जो बेटी पढ़ाई कर रही है, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है, आज के दिन उसे भी सलाम। जो बेटी अपने परिवार के लिए जिम्मेदारियां निभाते

हुए अपनी पहचान बनाने का सपना देख रही है, उसे भी सलाम। और उस बेटी को भी सलाम जो कई बार थकती है, परेशान होती है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर आगे बढ़ती है। श्रोताओं, आज के दिन हम यही कहेंगे, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी जो महिला श्रोता हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि अपने आप से एक बात कहिए कि आप किसी से कम नहीं हो। और साथ ही मुझे अपनी ज़िंदगी, अपनी मेहनत और अपने अस्तित्व पर गर्व है, इस बात को भी अपने आप को ज़रूर कहिए। क्योंकि हर बेटी को हमेशा किसी और की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी उसे खुद भी अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। तो आज डॉटर्स डे पर मेरी तरफ़ से दुनिया की हर बेटी को ढेर सारा प्यार और एक ख़ास शुभकामना। बेटी, तुम सिर्फ किसी की बेटी ही नहीं हो, तुम खुद भी एक पूरी पहचान हो। अपने सपनों को जगह दीजिए, अपनी आवाज़ को महत्व दीजिए और सबसे ज़रूरी, खुद को भी उतना ही सम्मान दीजिए जितना आप दूसरों को देती हैं। बिल्कुल श्रोताओं, और आज के दिन हम डॉटर्स डे मना रहे हैं, आपके घर में भी बेटियां हैं, बहनें हैं, उन्हें भी शुभकामना संदेश दीजिए, भेजिए। अगर आपने उन्हें कॉल नहीं की है तो कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आज के दिन तो कम से कम उनका बनता ही है। बिल्कुल श्रोताओं, और कार्यक्रम में अब बनता है एक प्यारा सा गीत, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं साथ मिलकर एक प्यारा सा गीत ईमान बेईमान फिल्म से। और इस गीत को सजाया है आवाज़ों से, सुरों से, अलका याग्निक और उदित नारायण ने।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओं इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। शाम का ही समय है श्रोताओं और हम लोग अपने काम में व्यस्त भी हैं, साथ ही मौसम को भी देख रहे हैं, थोड़ा मौसम से भी घबरा रहे हैं और साथ ही रेडियो पर ये प्यारे प्यारे गीत हम सुन भी रहे हैं। और ज़रूर गीत सुनते सुनते अगर हम अपने काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। बहुत सारे श्रोता हमारे ऐसे होते हैं जो जब भी कोई काम करते हैं तो रेडियो सेट को ऑन कर लेते हैं और साथ साथ गीतों को गुनगुनाते भी हैं और साथ ही अपने घर के काम भी करते हैं। तो बिल्कुल श्रोताओं हम यही कहेंगे कि रेडियो के साथ जुड़े रहिए। साथ ही आपको बता दें 88.4 MHz पर हमीरपुर के ढटवाल की आवाज़ पर भी आप हमें सुन सकते हैं और सुन भी रहे हैं। ढटवाल से जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमीरपुर से जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी सुषमा की प्यार भरी नमस्कार है, गुड इवनिंग है। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी ठीक ठाक होंगे और आपके यहाँ मौसम कैसा है ज़रूर हमें बताइएगा। श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम आज बहुत सारी बातें आपके साथ करने वाले हैं, जानकारियाँ भी आप तक हमने पहुँचानी है और साथ ही आपको बता दें आज के दिन हमने डॉटर्स डे आज के दिन हम मनाते हैं और साथ ही इसके साथ साथ 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। पर्यटन यानी कि सिर्फ केवल घूमने फिरने का नाम नहीं है, ये स्थानीय संस्कृति, प्रकृति, रोजगार और लोगों की आजीविका से भी जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन भी जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देता है। बिल्कुल श्रोताओं और कभी कभी ज़िंदगी की भाग दौड़ से थोड़ा दूर निकलना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी हम अपनी रूटीन की लाइफ से बोर हो जाते हैं और लगता है कि कहीं काम को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर और सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर थोड़ा सा समय अपने आप को दे दिया जाए, कहीं बाहर निकला जाए और बाहर निकल के उन नज़ारों को देखा जाए, अपने मन को थोड़ा सा और हरा कर लिया जाए। और तब हमारा ध्यान जाता है कि हम कहीं ऐसी जगह जाएं जहां हम अपने आप के साथ समय बिता पाएं या फिर अपनों के साथ समय बिता पाएं। कभी हमें पहाड़ की कोई चोटी नज़र आती है और कई ऐसे स्थान हमें पता भी होते हैं, कई लोग हमें बताते हैं कि वहां जाने से बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी जगह है और हम भी प्लान करते हैं कि वहाँ जाएंगे और जाना भी चाहिए, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना चाहिए श्रोताओं। और कभी कभी किसी झील के किनारे बैठकर पानी की लहरों को देखना चाहिए, कभी किसी पहाड़ की चोटी को देखना चाहिए, खुली हवा में सांस लेना चाहिए, किसी गांव की पगडंडी पर चलते हुए वहाँ की संस्कृति को करीब से महसूस करना चाहिए। और ऐसा करने से आपको जो आनंद मिलेगा, आपको जो सुकून मिलेगा, उसकी तो बात ही क्या है। लेकिन फिर भी आजकल के इस समय में हम लोग कई अपने काम को छोड़कर नहीं जा पाते हैं या जाना ही नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि हम कहीं निकल जाएंगे तो पीछे हमारा परिवार रह जाएगा, हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो पेंडिंग हो जाएंगे और ये सोच सोच कर श्रोताओं हम अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ख़त्म कर चुके होते हैं। और तब लगता है कि काश हमने भी अपने समय को यूटिलाइज़ किया होता, अपने लिए जिया होता। तो अभी भी देर नहीं हुई है श्रोताओं, ज़रूर अपनी फैमिली के साथ या कभी अपने आप के साथ कहीं निकलिए और घूमिए फिरिए। और आज हम बात करने वाले हैं विश्व पर्यटन दिवस पर भी, तो श्रोताओं इस पर बात करेंगे लेकिन फिर से पहले चलते हैं गीत की ओर और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये एक और प्यारा सा गीत। तो लीजिए सुनिए इस गीत को कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस समय आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। प्यारे प्यारे गीतों के साथ बातों का ये सिलसिला भी श्रोताओं इस कार्यक्रम में चला हुआ है।

और हमारे बहुत सारे श्रोता इस कार्यक्रम के साथ जरूर जुड़े हुए हैं और गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही गुनगुना भी रहे हैं। श्रोता कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, जिसे कि हर जगह से सुना जाता है और हर तरह के श्रोता हमारे साथ जुड़े होते हैं, चाहे वो महिला श्रोता हों, घर में काम करने वाली हों, बाहर कामकाज करती हों, या फिर ऑफिस में बैठने वाले जो हमारे श्रोता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, किसान श्रोता भी हमारे साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल, तो मिली जुली बातों के साथ हम कार्यक्रम में हाजिर होते हैं और सबका ख्याल रखते हुए मनोरंजन भी करवाते हैं और जानकारियां भी उन तक पहुंचाते हैं। तो एक जानकारी जो है वो हम अपने पशुपालकों के लिए लेकर आए हुए हैं और ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्रोताओं बहुत सारे किसान साथी हमारे ऐसे भी होते हैं जो बागवानी के साथ साथ और भी बहुत सारे व्यवसाय करते हैं, जैसे कि मधुमक्खी पालन का जो एक व्यवसाय है वो भी आजकल बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा युवा जो है वो भी बढ़ चढ़ कर इन व्यवसायों को अपना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अपनी धरती के साथ जुड़े रहना चाहिए और किसी भी काम को हम एक अच्छे व्यवसाय के रूप में कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी सोच यही रहती है कि पढ़ लिख कर कहीं हमें जॉब मिल जाए, उसके लिए हम अपने देश प्रदेश को छोड़कर बाहर भी चले जाते हैं, लेकिन अपनी मिट्टी के साथ जुड़कर, अपने देश प्रदेश के साथ जुड़कर भी हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो श्रोताओं, मधुमक्खी पालक जितने भी हैं हमारे, उनके लिए जो है एक खबर हम कार्यक्रम में लेकर आ रहे हैं। हिमाचल के मोन पालकों पर बड़ा संकट आया हुआ है। बेहद ख़तरनाक स्मॉल हाइव बीटल नामक कीड़े ने मोन पालकों के हज़ारों बॉक्स तबाह कर दिए हैं। हालात में सुधरे तो सुधार आने वाले समय में ये बिज़नेस जो है पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। उधर बागवानी विभाग तेज़ी से जागरूकता कैंप लगाने के लिए शुरुआत कर दी है। हिमाचल के कुल 15,000 मोन पालकों में 1980 तो अकेले कांगड़ा में रजिस्टर्ड हैं। इसके लिए अनरजिस्टर्ड की संख्या भी काफ़ी है। सुरेंद्र कुमार, रविंदर, विशाल लिहान और बलदेव आदि ने बताया कि ये कीड़ा जो है मधुमक्खियों के साथ छत्तों में पहुंचकर तेज़ी से संख्या बढ़ाता है और शहद को ख़राब कर देता है। ये कीड़ा छतों में पहुंचने के बाद वहीं अंडे देकर अपनी संख्या बढ़ाता है, इसके अलावा शहद को दूषित कर उसे सड़ा देता है, जिससे पूरा छत्ता खराब होने का खतरा रहता है। हालात ये है कि जिन मोन पालकों के पास 100 बॉक्स थे, उनमें से करीब 50 बॉक्स तक प्रभावित होने की बात सामने आ रही है। बहरहाल मोन पालकों ने प्रदेश सरकार से राहत और मुआवजा देने की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में सरकार ने मोन पालकों को राहत दी है, इसलिए हिमाचल में भी प्रभावित परिवारों की मदद की जानी चाहिए। वहीं धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार से मोन पालकों को मुआवजा देने की मांग की है। तो श्रोताओं, ये खबर आप तक इसलिए पहुंचाई जा रही है, जितने भी हमारे मोन पालक हैं वो भी सतर्क हो जाएं, और अगर उन तक वो कीड़ा नहीं पहुंचा है तो अपना ख्याल रखें, अपनी मधुमक्खियों के छत्तों का ख्याल रखिए। और जो भी काम हम करते हैं, कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का डर रहता है कि कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है, लेकिन नुकसान से अगर हम डरे तो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी हम कोई काम करते हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है। खैर, अगर कहीं नुकसान हुआ है तो कहीं फ़ायदा भी होगा और किसी भी चीज़ का, किसी भी बीमारी का हल भी होता है। तो श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में फिर से समय है आप तक गीत पहुँचाने का, लेकिन पहले हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल और उस अंतराल के बाद फिर से जुड़ेंगे कार्यक्रम में। यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला पर, और कार्यक्रम इस समय आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गीतों के साथ साथ बातें भी ज़रूरी है, बातों के साथ साथ जानकारियां भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो श्रोताओं, एक बार फिर से हम रुख करेंगे जानकारियों की ओर और आप तक पहुँचाएँगे जानकारी। राज्यपाल ने दिलीप सिंह राणा को सम्मानित करते हुए हिमाचल प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के मंच तक उनकी उल्लेखनीय यात्रा की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री राणा की उपलब्धियों ने हिमाचल प्रदेश और भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है तथा उनके संघर्ष और सफलता ने युवा पीढ़ी को दृढ़ संकल्प, अनुशासन और कड़ी मेहनत के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया है। इस दौरान राज्यपाल और दिलीप सिंह राणा ने हिमाचल प्रदेश में खेल, युवा सशक्तिकरण और खेल प्रतिभागों को प्रोत्साहन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। राज्यपाल ने युवाओं को विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए अधिक अवसर, उचित मार्गदर्शन और उपयुक्त मंच उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह और प्रतिभा को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में खेलों के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने राज्य के युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभागियों में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी, और जानकारी के साथ ही इस जानकारी को आप तक पहुँचाते पहुँचाते एक बात और दिमाग में आई कि आजकल जो छोटे बच्चे हैं हमारे, उन्हें खेलों का इतना अभ्यास नहीं है और उसके पीछे कारण शायद हम ही हैं, क्योंकि हम बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, कारण भी बहुत सही हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि बच्चों का जो बचपन है वो कहीं ना कहीं धूल मिट्टी में थोड़ा सा होना चाहिए, यानी कि बच्चों को भी मैदान में निकलना चाहिए, थोड़ी सी कसरत उनकी होनी चाहिए, जो कि अब बहुत कम हो गई है। आजकल की कसरत जो है वो मोबाइल फ़ोन पर बच्चों की ज़्यादा होती है, इसे कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इस बात को हम समझने में बहुत देर कर रहे हैं। और ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और हमारे बच्चों में वो चीज़, वो जो प्रभाव है मोबाइल फ़ोन की, एक जो लत है वो उसे पकड़ ले, बच्चों को पकड़ ले। इसलिए बच्चों को मोबाइल से दूर कीजिए, थोड़ा सा समय उनके साथ बिताइए, उन्हें घर के बाहर आंगन में या किसी मैदान में लेकर जाइए और वो खेल खिलाइए जो आप अपने बचपन में खेला करते थे। तो श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब वापस लौटते हैं कार्यक्रम में, बातों को यहीं पर देते हैं थोड़ा सा ब्रेक और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत। लीजिए सुनिए श्रोताओं, ये गीत आपके अपने रेडियो सेट पर भेज रहे हैं, इंजॉय कीजिए इस गीत को और इस गीत के बाद ज़रूर हम फिर से लौटेंगे बातों के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना दाग फिल्म का गीत कुमार शानू और अरुणाधा पोडवाल की आवाज़ों में। श्रोताओं, गीतों के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो मन ही नहीं करता कि हम कुछ बोलें, बात करें, सिर्फ दिल करता है ऐसे ही प्यारे प्यारे गीतों को सुनते जाएं। लेकिन बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि हम आपसे बात करने के लिए भी आते हैं और हम श्रोताओं से बात ना करें तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। खैर श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि 7 बजे हम सुनते हैं समाचार और समाचारों का समय जो है होने ही वाला है। तो चलिए बातों को रोकते हैं और समाचारों से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत। दिल आशना है इस फिल्म का गीत श्रोताओं, साधना सरगम और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर।

0: 91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और कहीं ना कहीं हमारे श्रोता इंतज़ार कर रहे थे कि गीत आएगा, लेकिन भाई बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, और रुकावट आ जाए तो कोई बात नहीं, हम बैठे हैं आपके साथ बात करने के लिए। जैसे कि हमने बात की कि आपको सुनवाएंगे गीत, और जिस गीत को हम सुना नहीं पाए उस गीत को आपको ज़रूर सुनवाएंगे समाचारों के बाद, लेकिन तब तक हम कर लेते हैं थोड़ी सी और बातचीत। तो श्रोताओं, आज 27 सितंबर का दिन है और आज हम सभी मना रहे हैं विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस हमें ये सोचने का अवसर देता है कि पर्यटन हमारे जीवन और समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पर्यटन से होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट और दुकानदार, स्थानीय जो कलाकार हैं, साथ ही हस्तशिल्पकार, गाइड और छोटे छोटे कारोबार जुड़े होते हैं। यानी जब कोई पर्यटक किसी जगह घूमने आता है तो उसका खर्च कई स्थानीय परिवारों की आजीविका का हिस्सा भी बन सकता है। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हमारे लिए पर्यटन का अर्थ और भी खास हो जाता है। धौलाधार की बर्फीली चोटियाँ, धर्मशाला और मैक्लोडगंज की खूबसूरती, कांगड़ा की संस्कृति, पुराने मंदिर, गांव की सादगी, पहाड़ी रास्ते, स्थानीय भोजन और यहाँ की लोक परंपराएं, ये सब हमारे पर्यटन की पहचान है। बिल्कुल श्रोताओं, लेकिन थोड़ा सा सोचने की बात है कि अगर हम घूमने जाएं और वहाँ कूड़ा छोड़ आएँ, पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाएँ, नदियों और झरनों को गंदा करें, स्थानीय संस्कृति का सम्मान ना करें, तो क्या हम सच में पर्यटन कर रहे हैं? इसलिए आज ज़रूरत है ज़िम्मेदार पर्यटन की। जहाँ जाएँ वहाँ की प्रकृति को वैसा ही सुंदर छोड़ कर आएँ जैसी वो हमें मिली थी, लेकिन होता ऐसा नहीं है। हम जाते हैं, उन नज़ारों का आनंद लेते हैं और बहुत सारी फ़ोटोज़ लेकर आते हैं, क्लिक कर कर आते हैं, सेल्फियाँ लेकर आते हैं नदियों में, पहाड़ों पर, हरियाली में, लेकिन हम वो चीज़ क्लिक नहीं करते जो हम छोड़ कर आते हैं। और अगर कहीं हमारा ध्यान चला जाए तो एक पिक्चर उसकी भी हमें क्लिक कर लेनी चाहिए जो कूड़ा कचरा हम छोड़ कर आते हैं। तब आपको ज़रूर उस अपनी फ़ोटो के साथ उस पिक्चर को भी लगाना चाहिए कि क्या हम वहाँ जाकर एक अच्छे नागरिक की तरह पेश आए, क्या हमने प्रकृति को भी अपना सहयोग दिया। कहीं ना कहीं श्रोताओं, हमारी अपनी भी एक छाप हमें नज़र आएगी और तब हमें लगेगा कि हमने गलत किया। तो बातों को अब यहीं देंगे विराम, क्योंकि समय हो गया है समाचारों का। तो चलते हैं, सुनते हैं समाचार।
1: पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अब तक भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। श्री शाह ने बताया कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रम्मी कल्चर ऐप और अन्य गेमिंग ऐप से जुड़े मामलों में लगभग 442 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। ये कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। निदेशालय ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियों में सावधि जमा, व्यावसायिक दुकानें, एक विला और कई आवासीय संपत्तियां शामिल हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में कल पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। जापान के आईटी नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 4 रजत समेत कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विनी शंकर ने डेकाथोनल में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल करके कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य समेत 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। शगुन चौक।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है समाचारों के बाद। तो श्रोताओं, एक बार फिर से सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और कार्यक्रम के साथ जुड़े होंगे। तो श्रोताओं, आज संडे की शाम है और शायद आज आप सब ने दिन में अपने तरीके से अपने सोचे हुए काम ज़रूर किए होंगे और आज के दिन को, यानी कि छुट्टी वाले इस दिन को, संडे को एंजॉय किया होगा। किसी ने परिवार के साथ समय बिताया होगा और किसी ने दोस्तों के साथ मुलाकात की होगी, किसी ने घर के छोटे बड़े काम जो हैं वो निपटाए होंगे और किसी ने आराम भी किया होगा, क्योंकि कभी कभी बिना कुछ किए सिर्फ सुकून से बैठने का भी मन करता है और संडे हमें इसीलिए मिलता है कि हम अपने अनुसार अपने दिन को एंजॉय कर सके। हो सकता है श्रोताओं, आज के दिन बहुत सारे लोगों ने अपनी पसंद का खाना जो है वो बनाया होगा, कहीं घूमने गए होंगे और बच्चों के साथ भी समय बिताया होगा। लेकिन श्रोताओं, शाम होते होते कहीं ना कहीं जो है वो एक सोच विचार हमारे दिमाग में आने लग पड़ता है कि संडे अब ख़त्म होने वाला है, मंडे आने वाला है, एक नया सप्ताह हमारे सामने है और बहुत सारी प्लानिंग्स जो है, बहुत सारे काम हमारे दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन श्रोताओं, कहते हैं ना कि काम करते रहना चाहिए और अपने आप को बिज़ी रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम घर पर ही बैठे रहेंगे, आराम करते रहेंगे तो भी हम बोर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जब हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान यहाँ वहाँ नहीं भटकता है और हम अपने आप को खुश भी रख पाते हैं और अपने आप को बिज़ी भी रख पाते हैं। और रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हमेशा तैयार रहता है आपका मनोरंजन करवाने के लिए, और अगर आप घर पर भी हैं, कहीं काम भी कर रहे हैं, तो आप हमें हमेशा सुन सकते हैं, प्यारे प्यारे गीतों के साथ जुड़ सकते हैं, जानकारियों के साथ जुड़ सकते हैं। तो श्रोताओं, संडे की शाम को एंजॉय कीजिए और देखिए, जैसे कि पहले हमने कहा था आपको गीत सुनवाएंगे, लेकिन किसी वजह से हम उस गीत को आप तक नहीं पहुंचा पाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। तो चलिए उस गीत को दोबारा से आपके लिए प्ले करती हूँ और सुनाती हूँ आपको वो प्यारा सा गीत, दिल आशना है। इस फिल्म का गीत है और साधना सरगम और सुरेश वाडकर की आवाज़ें हैं।

बिल्कुल श्रोताओं, देर से ही सही लेकिन हमने आप तक ये गीत पहुंचा दिया। और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला अभी आप सुन रहे हैं, इन गीतों को आप सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे श्रोताओं की, आज संडे की शाम है और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये भी है कि कल फिर से सुबह होगी, अलार्म बजेगा, काम की शुरुआत होगी, बच्चे स्कूल जाएंगे, किसी को ऑफिस पहुँचना होगा, किसी को अपनी दुकान खोलनी होगी और किसी को खेतों का रुख करना होगा, यानी ज़िंदगी फिर अपनी रफ्तार पकड़ लेगी। लेकिन दोस्तों, नए हफ्ते की शुरुआत सिर्फ कैलेंडर बदलने से नहीं होती, नई शुरुआत तो तब होती है जब हम अपनी सोच और अपनी ऊर्जा को भी नया कर लेते हैं। तो आज की इस संडे शाम को बीते हुए सप्ताह की परेशानियों को थोड़ा पीछे छोड़ दीजिए, जो अच्छा हुआ उसके लिए हमें खुद को शाबाशी देनी चाहिए, जो अच्छा नहीं हुआ उससे हमें सीख लेनी चाहिए और जो आने वाला है उसके लिए उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि हर नया सप्ताह अपने साथ 7 दिन लेकर आता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास समय फिर से लौट कर आता है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, अपने रुके पड़े कामों को फिर से करने के लिए। बिल्कुल श्रोता, और अपने आप से ये भी कहिए कि जो बीत गया वह मेरा अनुभव है, जो आने वाला है वह मेरी नई शुरुआत है। तो अपने श्रोताओं को हम यही कहेंगे कि संडे की इस शाम थोड़ी देर ठहरिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने परिवार के साथ कुछ पल बिताइए और अपने मन से कहिए कल से एक नया सप्ताह है और मैं इसे अपनी पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू करूँगा। बिल्कुल श्रोताओं, और आपके मनोरंजन के लिए हम लोग भी समय समय पर आते रहते हैं और अपने श्रोताओं का मनोरंजन करवाते रहते हैं, आप लोगों में एक नई ऊर्जा और एक सकारात्मक ऊर्जा को भरने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो श्रोताओं, चलिए फिर बातों को यहीं पर रोकते हैं और गीतों की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं कार्यक्रम में एक और प्यारा सा गीत, सलमा पे दिल आ गया। बिल्कुल श्रोताओं, अब आप सुनने वाले हैं इस फिल्म का गीत कुमार शानू और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना इस प्यारे से गीत को और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। श्रोताओं, इस गीत के चलते चलते मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी और मुझे लगा कि आपके साथ इस बात को करना चाहिए। कुछ दिन पहले ही एक शादी में जाना हुआ और वहाँ जिस घर में शादी थी वो रोड से बहुत दूर घर था, तो ऐसे में पालकी में दुल्हन को लाया गया और पालकी में ही दूल्हा जो है वो बारात लेकर गया। तब मेरे दिमाग में आया कि ये पालकियाँ जो हैं कहीं ना कहीं अब विलुप्त होती नज़र आती हैं, क्योंकि पुराने समय में पालकियों में दूल्हा दुल्हन जाया करते थे और पालकी का अपना ही एक मज़ा हुआ करता था। दूर से देखकर लगता था कि किसी की पालकी आ रही है, यानी कि नई दुल्हन जो है वो अपने ससुराल आ रही है। और साथ ही श्रोताओं, पालकी कभी भारतीय शादियों की एक खूबसूरत पहचान भी हुआ करती थी। जब दुल्हन को विदा किया जाता था तो सजी सजाई पालकी में बैठा कर उसे ससुराल ले जाया जाता था। फूलों से सजी पालकी, कहारों के कदमों की लय और परिवार की भावुक विदाई, इन सब में एक अलग ही पहचान और गरिमा हुआ करती थी। समय बदला, साधन बदले और शादी ब्याह का अंदाज भी बदल गया। आज कारों में और आधुनिक वाहनों ने पालकी की जगह ले ली है। अब पालकी का इस्तेमाल बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इसकी यादें आज भी हमारी लोक संस्कृति और परंपराओं में जीवित है। पालकी जो है वो सिर्फ दुल्हा दुल्हन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का साधन नहीं थी, बल्कि वह एक रिश्ते की नई शुरुआत की साक्षी भी हुआ करती थी। दुल्हन मायके से विदा होकर अपने नए संसार की ओर बढ़ती थी और पालकी उस भावुक सफ़र की साथी बनती थी। लेकिन श्रोताओं, ये थी शब्द बोलते बोलते कहीं ना कहीं दुख भी हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हम भूलते चले जा रहे हैं और हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन ये बात भी कहना चाहेंगे कि आजकल के इस युग में, इस समय में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब पालकी की बात आती है तो आजकल के युवा जो हैं वो थोड़ी सी शर्म महसूस करते हैं कि पालकी में कौन जाएगा, हम तो अपनी बड़ी गाड़ी में ही जाएंगे। और जहाँ तक बात आती है वेशभूषा की, जो दूल्हा दुल्हन की जो वेशभूषा पुरानी बनी हुई है, उनसे भी हम लोग थोड़ा सा दूर होते चले जा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हम सूट में जाएंगे, लहंगा पहन के जाएंगे, लेकिन अपनी जो संस्कृति, अपनी जो परंपरा के साथ जो जुड़ी हुई जो वेशभूषा है उसे हम पहनने में थोड़ी सी शर्म करते हैं। लेकिन हमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को भूलना नहीं चाहिए। चाहे हम कितने भी बड़े बन जाएं, कितने भी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएं, अपनी संस्कृति को जोड़े रखना चाहिए। साथ ही श्रोताओं का

कार्यक्रम में एक बात और कहना चाहेंगे कि जिस संस्कृति जिस परंपरा को हम थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं उसे आज के समय में विदेशी लोग जो हैं वो अपना रहे हैं, इसलिए हमें अपनी संस्कृति अपनी परंपरा की संभाल करनी है, उसकी इज्जत भी करनी है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग भी हैं जो इन्हीं परंपरा और इन्हीं संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहना भी चाहते हैं। बहुत बड़ी और बहुत अच्छी सोच है और ऐसी सोच हर किसी में होनी चाहिए। तो श्रोताओं, एक छोटी सी बात थी दिमाग में आई और आपके साथ हमने साझा की। आप में से कितने लोगों की शादी जो है पालकी में हुई है, कितने लोगों ने पालकी में उस अच्छे सफ़र को तय किया है, ज़रूर हमें मैसेज के द्वारा बताइएगा। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाते हैं। पालकी वाला ही ये गीत है, खलनायक फिल्म से लिया है। लीजिए श्रोताओं, सुनिए इस प्यारे से गीत को और ताज़ा कीजिए पालकी की उन यादों को।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। साथी कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आज अपने रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये गीत और आपको ज़रूर ये गीत पसंद भी आया होगा। श्रोताओं, अब समय है एक छोटे से अंतराल का। इस अंतराल के बाद फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। यूँ ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि मौसम ने फिर से करवट ले ली है, यानी कि अब सर्दियां जो हैं वो आ ही गई हैं, सुबह शाम जो है वो सर्दी हो रही है। तो ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे, अपना ख्याल रखिए और मौसम को बदलते समय हमें भी कुछ एक बदलाव जो है अपने खाने में, पहनने में करने पड़ते हैं, उन्हें भी समय के अनुसार हमें करना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और एक प्यारा सा गीत आप तक फिर से पहुंचा रहे हैं, दिल है बेताब, इस फिल्म का गीत श्रोताओं आप सभी सुनेंगे उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में।

0: 91.2 MHz पर श्रोताओं, अभी आपने सुना ये गीत। और श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको हम सुनवाते हैं प्रेरणादायक कहानी, तो आज भी ये कहानी लेकर हम आए हैं। श्रोताओं, आज की जो कहानी है वो एक हथौड़े की और एक चाबी की है जो आपस में बात करते हैं। एक बार की बात है, एक बड़ई की दुकान में एक चाबी और हथौड़ा रखा हुआ था। दोनों के बीच में अक्सर इस बात को लेकर बहस होती थी कि उनमें से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है। हथौड़ा बड़े ही गर्व से कहता था कि मेरे बिना कोई मजबूत चीज़ टूट ही नहीं सकती, कोई कील अपनी जगह ठीक से नहीं बैठ सकती, मैं ताकतवर हूँ इसलिए मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी हूँ। चाबी मुस्कुराकर कहती, ताकत होना ही सब कुछ नहीं है, कई बार एक छोटी सी चाबी भी बड़े काम कर दिखाती है। एक दिन क्या हुआ, बड़े ही के सामने एक बंद ताला आया। तब हथौड़े ने कहा कि इस ताले को मेरे हवाले करो, मैं इसे खोल देता हूँ। और हथौड़े ने अपना पूरा जोर लगाया लेकिन ताला नहीं खुला। तब चाबी सामने आई और वो धीरे से ताले में गई और थोड़े से घुमाने पर ताला खुल गया। हथौड़ा चुप होकर बैठ गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती श्रोताओं। कुछ देर बाद बड़ई को एक लकड़ी के मेज ठीक करनी थी, उसके लिए एक कील को मजबूती से लगाने के लिए हथौड़े की ज़रूरत पड़ी। हथौड़े ने कील पर चोट की और कील अपनी जगह मजबूती से बैठ गई। अब चाबी मुस्कुराई और बोली, देखा, तुम्हारी भी अपनी जगह है और मेरी भी अपनी जगह है। हथौड़े ने सिर हिलाया और कहा कि तुमने सही कहा, हर चीज़ की अपनी उपयोगिता होती है, किसी को छोटा या बड़ा समझना सही नहीं होता। तो श्रोताओं, यही बात हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। किसी के पास हमसे ज़्यादा पैसा है, किसी की नौकरी अच्छी है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, तो कोई किसी और हुनर में आगे है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हर इंसान की अपनी खासियत होती है। जिस तरह ताला खोलने के लिए चाबी ज़रूरी है और कील लगाने के लिए हथौड़ा, उसी तरह ज़िंदगी में अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग भूमिका होती है। इसलिए खुद को किसी और से कम मत समझिए और किसी दूसरे को खुद से कम मत समझिए। ये थी आज की कहानी और उम्मीद करूँगी आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और हमें ये कहानी बहुत कुछ सिखाती भी है। ऐसी कहानियाँ श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम रोज़ाना लेकर आते रहते हैं और मनोरंजन के साथ साथ आपके साथ बातचीत भी करते हैं और कहानी भी सुनाते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो गया है प्रादेशिक समाचारों का। अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और प्रादेशिक समाचार सुनने पड़ेंगे, उसके बाद हम आप वापस लौटेंगे कार्यक्रम में।
1: आकाशवाणी राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज की मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का पेश किया नया उदाहरण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार पूर्व सैनिकों और रक्षा कर्मियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। भाजपा ने देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ टिप्पणी पर कांग्रेस नेताओं की आलोचना। विश्व पर्यटन दिवस पर आज प्रदेश में हुए कई कार्यक्रम और राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों

0: में हिमपात व अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा से तापमान में गिरावट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने बार बार ये संदेश दिया है कि आतंकवादी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: जनगणना अभियान को सभी की राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान में 32 करोड़ से अधिक परिवारों का डेटा दर्ज कर लिया गया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान में युवाओं की भागीदारी पर भी प्रसन्नता जताई।
2: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे। माई भारत पर
1: एक जिला एक उत्पाद की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मुहिम से किसानों की आय में वृद्धि हुई है।
2: हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गाँव और छोटे शहरों की पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित न रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है।
1: प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से उत्साहवर्धक कहानियां साझा करते रहने का आह्वान किया और कहा कि ये जानकारियां अन्य लोगों को भी प्रेरणा देती हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और रक्षा कर्मियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेना के जवान राष्ट्र और राज्य की सुरक्षा व अखंडता सुनिश्चित करने में अमूल्य योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को सशस्त्र सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने और भर्ती प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने का कार्य भी निरंतर कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सशस्त्र सेना में योगदान देने की एक लंबी और गौरवशाली परंपरा रही है और राज्य के युवा साहस, अनुशासन और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि सरकार प्राकृतिक कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। सोलन की नौणी मझगांव पंचायत में किसान मेले के समापन पर कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। धनीराम शांडिल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए किसानों, बागवानों और पशुपालकों को विकसित करना आवश्यक है। प्रसिद्ध पहलवान दिलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेट खली ने आज लोक भवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने दिलीप सिंह राणा को सम्मानित करते हुए हिमाचल प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के मंच तक उनकी उल्लेखनीय यात्रा की सराहना की। राज्यपाल ने युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद।
3: यार, दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
4: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश। सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
5: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। भाजपा ने देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ टिप्पणी पर कांग्रेस की आलोचना की है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि कांग्रेस अपनी हताशा में इस तरह के प्रदर्शन कर रही है।
6: सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं तहस नहस करने का एक मकसद के साथ काम करने का तरीका चल रहा है, जिसको देश कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अंदाजा लगाइए कि जिस चुनाव आयोग के माध्यम से देश के अंदर चुनाव संपन्न हो, ये बात अलग है कि वो चुनाव हार गए और आज से नहीं कई वर्षों से चुनाव हार रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में तो जहां चुनाव जीते हैं उसी चुनाव आयोग ने चुनाव करवाए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर सारे मिल करके वहां चुनाव आयोग के बोर्ड के ऊपर काली पोत रहे। चुनाव आयोग का पुतला जला रहे, एक संवैधानिक पद पर व्यक्ति संवैधानिक संस्थाओं का पुतला जला रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और हो नहीं सकता है।
0: इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि चुनाव आयोग के तीनों आयुक्तों के रुख के बाद आयोग के खिलाफ लगाए गए कांग्रेस के आरोपों की पोल खुल चुकी है। उन्होंने कहा कि अपनी हार पर सही अर्थों में मंथन ना करके संवैधानिक संस्थाओं पर इसका टीकरा फोड़ना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। उधर धर्मशाला में एक कार्यक्रम में सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि तथ्यों के बिना संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता देश को भ्रमित करने और अपनी हार को निराधार आरोपों से छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री राजेश खेमाणी ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के विस्तार पर विशेष बल दे रही है। घुमारवीं क्षेत्र की लद्दा पंचायत में आज सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल संस्थान खोलना ही नहीं बल्कि उनमें पर्याप्त स्टाफ, आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा के 25 वर्ष पूरा कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता व सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए कार्य कर रही है। इस उद्देश्य से शुरू हुआ सरकार का स्टार्टअप आंदोलन रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार हमें भविष्य के लिए तैयार होने और नए आइडियाज पर काम करने की जरूरत है।
7: अब हमें भविष्य के लिए तैयार होना होगा, हमें नए आइडियाज पर काम करने की जरूरत है। आज कई ऐसे डोमेन उभर रहे हैं जो कल देश में इकोनॉमिक सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में अहम रोल निभाएंगे। AI का उदाहरण हमारे सामने है। जो राष्ट्र AI रिवोल्यूशन में जितना आगे होगा उसके पास उतना ही एडवांटेज होगा। भारत के लिए ये काम हमारे स्टार्टअप को करना।
0: आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। चंबा में एक कार्यक्रम में उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा कि जिला में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और ग्रामीण पर्यटन को आजीविका से जोड़ना महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में मनाली में एक्सपो देवलोक का आज समापन हुआ। इस दौरान प्रदेश में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए प्रयास जारी रखने पर बल दिया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में भी पर्यटन सप्ताह आज संपन्न हो गया। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा जबकि चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। मौसम के इस मिजाज से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात से इन क्षेत्रों में ठंड का दौर बढ़ गया है। हमारी संवाददाता के अनुसार किन्नौर जिला के छितकुल में करीब 3 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है। जिला में इन दिनों सेब सीजन चरम पर है और ऐसे में अचानक बदले मौसम ने किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ा दी है। सिरमौर जिला में भी अधिकांश स्थानों पर वर्षा का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य के विभिन्न जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का पेश किया नया उदाहरण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार पूर्व सैनिकों और रक्षा कर्मियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। भाजपा ने देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ टिप्पणी पर कांग्रेस नेताओं की आलोचना। विश्व पर्यटन दिवस पर आज प्रदेश में हुए कई कार्यक्रम और राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा से तापमान में गिरावट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
8: 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और अभी आपने सुने प्रादेशिक समाचार। श्रोताओं, और प्रादेशिक समाचार ख़त्म होते ही हमारी जो स्टूडियो की घड़ी है वो हमें इशारा करती है कि अब समय कार्यक्रम का समाप्त होने वाला है। तो श्रोताओं, अब चलते चलते आज का कार्यक्रम का आखिरी गीत आप तक पहुँचाना है, जिसे हम लेकर आए हैं हम आपके हैं कौन फिल्म से। लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में सुनिए ये गीत, और इस गीत के साथ अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए आज के कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्पदंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्पदंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्पदंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: क्या है?
1: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू, पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं, लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना से यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस?
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना ये, भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की, होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं, अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली दे के बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
7: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
9: दिला तो दूंगा, पर मेरे एक काम करना पड़ेगा।
7: हाँ बोलो।
9: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
7: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
9: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
10: गजब बेइज्जती है।

तुम्हारे गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूँ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हिमाचल प्रदेश में नमस्ते योजना के तहत स्वच्छता कर्मचारियों के बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू। CBSE से संबद्ध स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए CTET को मान्य योग्यता माना गया। हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश। शिमला मतौर फोरलेन अलाइनमेंट मामले में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका की बंद। दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा। खराब 16 स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम। पंचायत स्तर पर लगाई गई लाइटों की मरम्मत पंचायतें करेंगी। जल शक्ति विभाग के 393 आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में नमस्ते योजना के तहत सत्यापित फीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों के बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी माध्यमिक तथा उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नमस्ते योजना के तहत स्वच्छता कर्मियों का आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों के बच्चों को शिक्षा से जुड़ी सहायता उपलब्ध करवाना है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करीब 90,000 फीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मियों तथा 2.5 लाख से अधिक कचरा बीनने वालों का सत्यापन किया गया है। योजना का दायरा अब ग्रामीण क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ड्रेन कर्मियों तथा FTP और FFTP कर्मियों को भी योजना के दायरे में शामिल किया जा रहा है। हिमाचल के उच्च शिक्षा विभाग ने 26 सितंबर को स्कूलों को पत्र जारी कर संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। पात्र विद्यार्थी यदि अभी तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं तो उन्हें आवेदन के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने CBSE से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने कहा है कि ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET वैध योग्यता है। केवल हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी HPTET का प्रमाण पत्र नहीं होने के आधार पर किसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को रद्द नहीं किया जा सकता। ये मामला शिक्षक समाज शास्त्र के पद के लिए आवेदन करने वाले एक अभ्यर्थी की याचिका से जुड़ा था। याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को इस आधार पर खारिज किया गया था कि कट ऑफ तारीख से पहले उनके पास HPTET प्रमाण पत्र नहीं था। मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस शिक्षक भर्ती के लिए CTET को वैध योग्यता के रूप में मान्यता दी गई है। अदालत के समक्ष शिक्षा विभाग की ओर से लिखित निर्देश भी पेश किए गए। विभाग ने स्वीकार किया कि चूंकि CBSE अपने संबद्ध स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए CTET को मान्य मानता है, इसलिए केवल HPTET न होने के आधार पर उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला मटौर फोरलेन अलाइनमेंट मामले में स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका को बंद कर दिया है। मामला शिमला से नौनी चौक के बीच फोरलेन के अलाइनमेंट में हुए बदलाव से संबंधित था। हाईकोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों द्वारा विचार विमर्श के बाद लिए गए नीतिगत फैसलों में न्यायिक समीक्षा के तहत हस्तक्षेप की गुंजाइश सीमित है। अदालत ने ये मामला अक्टूबर 2024 में स्वतः संज्ञान में लिया था। इसमें अलाइनमेंट बदलने को लेकर सवाल उठाए गए थे। NHAI ने अदालत में बताया कि शिमला से नौनी चौक वाले हिस्से को 2 पैकेजों में बांटा गया है। NHAI के अनुसार नई अलाइनमेंट को उच्च स्तरीय बैठकों के बाद मंजूरी दी गई थी। NHAI ने यह भी कहा कि नई अलाइनमेंट से सड़क की ज्यामिति बेहतर होगी, पेड़ों की कटाई कम होगी और लोगों के विस्थापन तथा संपत्तियों के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा शिमला शहर में यातायात दबाव कम करने का भी दावा किया गया है।
मंडी जिले के बलह क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी कर्मचारियों को दीपावली से पहले महंगाई भत्ता यानी डीए देने की घोषणा की है। हालांकि डीए कितने प्रतिशत की दर से दिया जाएगा इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से जुड़ी अपना परिवार सुखी परिवार योजना में भी बदलाव की घोषणा की। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए मनरेगा में एक दिन काम करने की शर्त हटाई जाएगी। साथ ही पात्रता के लिए परिवार की आय सीमा को बढ़ाकर 75,000 रुपये किए जाने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कर्मचारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना और पुलिस विभाग में भर्ती से जुड़े विषयों का भी उल्लेख किया। उन्होंने जल्द ही पुलिस कांस्टेबलों के 800 पदों पर भर्ती किए जाने की बात कही। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खराब पड़ी सोलर स्ट्रीट लाइटों को लेकर शिकायतों के बीच संबंधित विभाग ने इन्हें ठीक करने के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब पड़ी हैं। स्थानीय लोगों द्वारा शिकायतें किए जाने के बाद इन्हें ठीक करने का अभियान शुरू किया गया है। हिम ऊर्जा विभाग की ओर से संबंधित एजेंसियों और कंपनियों को खराब लाइटों की मरम्मत निर्धारित समय के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पंचायतों के स्तर पर लगाई गई सोलर स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत की जिम्मेदारी संबंधित पंचायतों की होगी। शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब सोलर लाइटों की जानकारी संबंधित विभाग तक पहुँचाए ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि कई स्थानों पर नई लाइटें लगाने के बावजूद उनके खराब होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। विभाग का कहना है कि शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में सेवाएं दे रहे 393 आउटसोर्स तकनीकी कर्मचारियों के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जानकारी के अनुसार इन कर्मचारियों का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक बढ़ाया गया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार इन कर्मचारियों में तकनीकी सहायता कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य तकनीकी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि आदेश में कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। कर्मचारियों का विस्तार 30 सितंबर 2027 तक या विभाग को उनकी वास्तविक आवश्यकता रहने तक जो भी पहले हो मान्य रहेगा। यदि इन पदों के विरुद्ध नियमित व्यवस्था हो जाती है तो आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो सकती हैं। यह सेवा विस्तार उच्च न्यायालय में लंबित एक मामले और वित्त विभाग के नियमों के अधीन भी बताया गया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके लिए अलग से अतिरिक्त बजट की मांग नहीं की जाएगी और मौजूदा योजनाओं तथा परियोजनाओं के बजट से ही खर्च वहन किया जाएगा। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्पदंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्पदंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्पदंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: क्या है?
1: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ। मैं तो अच्छा हूँ, कईयों को लगता है ना ये। भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्रीराम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं, अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
10: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
9: हाँ बोलो।
10: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
9: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
10: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
11: गजब बेइज्जती है।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है। इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्पदंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्पदंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्पदंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: क्या है?
1: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं, लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना ये, भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की, होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्रीराम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं, अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
10: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
9: हाँ बोलो।
10: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
9: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
10: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
5: गजब बेइज्जती है।

रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्म शाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।